शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे किरनी। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यादें। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
3: सभी सुनने वालों को मेरा यानी किरनी का नमस्कार। आपका स्वागत है एक शानदार संगीत यात्रा में। इस शो में हम लेकर आ रहे हैं आपके दिलों को छू लेने वाले रेट्रो हिट्स, जिनकी धुनें हमेशा ताजगी का एहसास कराती है। और आज का हमारा टॉपिक है यादें। यादें भी अजीब होती है, दिल को बहलाती है, कभी हंसा देती है, कभी रुला जाती है।

बिछड़ कर भी जो पास रह जाती है वो यादें ही तो है जो कभी नहीं जाती है। यादों का असर कुछ ऐसा है जैसे बरसात की पहली बूंद का नशा है।

इसके साथ ही आज के रेट्रो हिट्स प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। अब बारी है अलविदा लेने की, लेकिन याद रखिए, रेट्रो हिट्स का सफर कभी खत्म नहीं होता। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे पुराने गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था यादें। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: फिर क्यों मुझको लगता है।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश करें हम। आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है, कार्यक्रम रंगमंच की ओर में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर।
1: हर जज्बा का पर्दा उठे, हंसी के साथ आंसू भी एक मंच पे आ मिलते, सपने जैसे जिंदा होते जब कलाकार।
2: जानेमन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पन्ने पर लिखी हुई कविता जब किसी इंसान का खून पसीना बन जाती तो वो स्क्रीन पर कैसी दिखती है? जी हाँ, नमस्कार। एक एक्टर को फिल्में कैसे देखनी चाहिए, इस सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक फिल्म को जी कर आया। फिल्म का नाम है प्यास। गुरदत्त साहब की एक ऐसी मास्टर क्लास जो हर उस इंसान को देखना और सुनना चाहिए जो एक्टिंग की बारीकियों को समझना चाहता है। आज हम बात करेंगे मुख्य किरदार विजय की, और इसे समझने के लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे प्यासा के तीन ऐसे सीन्स में जो हर नए एक्टर के लिए किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं है। याद कीजिए वो पल जब विजय को घर से निकाला जा चुका है, वो सड़क पर भटक रहा है और अचानक देखता है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी कविताएं एक रद्दी वाली के पास 10 आने में बिक रही है। इस सीन में गुरुदत्त साहब को ध्यान से देखिए, वो जोर से छाती नहीं पीटते, रोते नहीं, उनकी आंखों में एक खालीपन है। वो बस उस रद्दी वाले को अपनी नजमें फाड़ते हुए देखते रहते हैं। इसे एक्टिंग की भाषा में कहते हैं इंटरनल मोनोलॉग, यानी कि आंतरिक संवाद। उनके होठ खामोश है लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। नए एक्टर्स को सीखना चाहिए कि आपका दर्द आपके चेहरे की मांसपेशियों से नहीं, आपकी आंखों की गहराइयों से आता है, वहीं से वो दर्द छलकता है। अब आते हैं दूसरे सीन पर। विजय एक पार्क की बेंच पर लेटा हुआ है, थका हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसी की लिखी हुई नज़में गुनगुना रहा है। ये है गुलाब। इस सीन में विजय का रिएक्शन देखिए, स्टडी कीजिए उसके रिएक्शन को। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, एक्टिंग इज रिएक्टिंग, एक्टिंग इज लिसनिंग। जब विजय सुनता है कि उसकी बेगानी दुनिया में किसी अजनबी ने उसके शब्दों को अपना लिया है, तो उसके चेहरे पर जो अविश्वास, जो हैरानी नजर आती है, वो कमाल है। एक एक्टर के तौर पर आपको सीखना है कि सुनना कैसे है, सिर्फ अपनी लाइन का इंतजार मत कीजिए, दूसरे के शब्दों को अपने अंदर जाने दीजिए और फिर रिएक्ट कीजिए। और अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की, जो इस फिल्म का एक अहम सीन भी है। याद कीजिए, ऑडिटोरियम खचा खच भरा है, और दरवाजे पर एक परछाई पड़ती है। विजय वहाँ खड़ा है। पूरी फिल्म में जिस विजय के कंधे झुके हुए थे वो अचानक बदल जाता है। वो मंच की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे कोई विद्रोही, और फिर वो एक गाना गाता है। बड़ा फेमस गाना है वो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका किरदार अंदर से आजाद होता है तो उसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। वो झुका हुआ इंसान

गुस्से वाला होना चाहिए या उसमें इमोशंस भरे हुए होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। अब अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपने दोस्त को कैमरे के पीछे खड़ा कीजिए और कहिए कि वो पूरे जज्बात के साथ वो लाइनें पढ़े। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है। कोई बनावटी एक्सप्रेशन नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस उन शब्दों को अपने कानों से होकर दिल तक जाने दीजिए और जो असली रिएक्शन आपके चेहरे पर आए उसे रिकॉर्ड होने दीजिए। यकीन मानिए, कैमरे पर आपका वो सच्चा रिएक्शन आपके बोले गए हजारों डायलॉग से ज्यादा खूबसूरत हो। इसे रिकॉर्ड कीजिए, खुद देखिए और हाँ, मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि बिना शब्दों के खेलना कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही है ना, सीखते रहिए और कला को जीतते रहिए। मिलते हैं अगली फिल्म और एक नई मास्टर क्लास के साथ। नहीं।

0: इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: नमस्कार, आज का जो ललवाक ललेश्वरी शिवयोगिनी द्वारा कहा गया है ये बहुत ही विचित्र है क्योंकि इसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। ललदत्त कहती है, गोरस पृछोम सास लटे यस्न क्या मना तस क्या नाम, पृछान पृछान थचस्त लूसस केहनस ऋषि क्या थाम द्राव। यानी ललदत्त कहती है, गोरस पृछोम सास लटे हजारों बार मैंने अपने गुरु से पूछा, यस्न क्या मना तस क्या नाम, जिसे कुछ भी नहीं कहते उसका नाम क्या है। प्रसान प्रसान थचस्त लूसस पूछते पूछते मैं थक और हार गई, केहनस ऋषि क्या थाम द्राव, और अंत में कुछ नहीं मैं से ही सब कुछ निकला। ललदत्त की वो प्रभु को जानने की प्यास और उस प्रभु को जानने में वो अपने गुरु के पीछे पड़ी हुई है। वो गुरु भी क्या रहा होगा और ललदत्त भी क्या रही होगी कि जो निरंतर बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ललदत्त हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम रिचुअल्स प्रैक्टिसेस इनमें प्रभु नहीं मिलता। नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा के, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ललदत्त के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा तो, और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है। यानी जो मैं पूछ रही थी, जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी, वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं मिला। वो खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गई, खामोश हो गए, फना हो गए, भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

जरा सी आहट होती है तो दिल कहता है, कहीं वो तो नहीं। इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे, पिछले मौसम की तरह।

खामोशियों को मुअत्तर करती हैं। बस तुम्हारी आवाज सुनते हैं और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आते हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

काश तुम रोक लेती हमें चंद पलों के लिए, मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देती, मुझे सहलाती, मुझसे प्यार करती, मुझे अपनी बाहों में लेती, मेरा हाथ थामती। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करते, मुझे अपना समझते, मगर यह हो न सका, यह हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गीतकार साहिर लुधियानवी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपुरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का सफर उर्दू के उस अजीम शायर के नाम जिसने अपनी कलम से हर तलखी को नज़म बना दिया, जिसने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, आज हम साहिर लुधियानवी के पहलू टटोलेंगे और उनके बेहतरीन गीतों के साथ इस सफर को यादगार बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। साहिर का असली नाम था अब्दुल हई। 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में बचपन से ही कड़वाहट लिखी थी। जमींदार पिता और मां सरदार बेगम के बीच के तनाव ने उनके शुरुआती सालों को खौफ और आर्थिक तंगी में गुजारा। पिता ने मां पर मुकदमे किए, साहिर की जान को खतरा हुआ और इस भयानक माहौल ने साहिर के भीतर एक विद्रोही शायर को जन्म दिया। उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उनकी नज़में बेहद मशहूर हुई, लेकिन एक सहपाठी लड़की से प्रेम संबंध के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये निष्कासन उन्हें और उनकी मां को पहले लाहौर और फिर 1949 में बॉम्बे ले आया। उनका पहला कविता संग्रह तलखियां 1945 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें निजी दर्द और समाज के प्रति तीखी आलोचना थी। बॉम्बे आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। वो सिर्फ लोकप्रिय गाने लिखने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि उनके गानों में शायरी का एक गहरा एहसास हो। फिर उनकी मुलाकात हुई SD बर्मन से, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। बर्मन साहब ने एक धुन दी और साहिर ने उस धुन पर लिखा वो अमर गीत, जिसने उन्हें एक फिल्म गीतकार के तौर पर स्थापित कर दिया। पेश है साहिर की कलम से निकला फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने वाला पहला कदम।

ठंडी हवाएं एक ऐसी सादगी जो दिल को छू जाती है। इस गीत की सफलता के बाद साहिर और एसडी वर्मन की जोड़ी ने बाजी, जाल और टैक्सी ड्राइवर जैसे कई हिट फिल्में दी, लेकिन साहिर का असली इनकलाबी पहलू अभी सामने आना बाकी था, जिस पर हम अब रोशनी डालेंगे। साहिर लुधियानवी को हिंदी सिनेमा का इनकलाबी शायर कहा जाता है। वो पहले गीतकार थे जिन्होंने अपने गीतों के लिए पारिश्रमिक तय करने पर जोर दिया और फिल्म के पोस्टर पर गीतकार को संगीतकार के बराबर जगह दिलवाई। वो सिर्फ प्रेम गीत नहीं लिखना चाहते थे, उनका मानना था कि एक कलाकार को समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहिए। 1957 में फिल्म प्यासा आई, जिसमें साहिर ने गुरु

जाने वो कैसे लोग थे, आज भी हर संवेदनशील दिल इस गीत से जुड़ाव महसूस करता है। इस गहन सामाजिक दृष्टिकोण के बावजूद साहिर की रोमानियत भी बेमिसाल थी। उन्होंने प्यार को सिर्फ फूल और चांद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक सच्चा साथी माना। फिल्म हम दोनों में संगीतकार जयदेव के साथ साहिर ने एक ऐसा फलसफा पेश किया जो आज भी मुश्किलों में जीने का हौसला देता है। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी के साथ चलने में भी असली खुशी है। फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनिए जिंदगी के सफर का ये अमर गीत।

1960 का दशक साहिर के करियर की ऊंचाई थी। उन्होंने खयाम, रवि, रोशन और एन दत्ता जैसे कई महान संगीतकारों के साथ काम किया। साहिर की लेखन शैली की खासियत थी उनकी भाषा में मौजूद सादगी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। साहिर को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1964 में फिल्म ताजमहल के लिए और फिर 1977 में फिल्म कभी कभी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ताजमहल में उन्होंने एक ऐसे प्यार को लफ्ज दिए जो महलों से बड़ा और वादा निभाने की कसौटी पर खरा उतरता है। एक ऐसा वादा जो हर युग के प्रेमियों के लिए एक मिसाल बन गया।

साहिर का एक और पहलू है जो फिल्म वक्त में नजर आता है। उन्होंने इस फिल्म में एक गहरी बात कही कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वक्त सबसे बड़ा है। उन्होंने कल की चिंता और गुजरे हुए कल के अफसोस से मुक्त होकर आज में जीने की सीख दी, क्योंकि जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। फिल्म वक्त से ये गीत जो हमें समय की सच्चाई से रूबरू कराता है और साथ ही जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है।

साहिर की रूमानी नज्मों में हमेशा एक सूक्ष्म विद्रोह मौजूद रहा। फिल्म हमराज में उन्होंने नीले गगन के नीचे बैठकर अपने महबूब से दूर रहने की कल्पना की, लेकिन उस दूरी में भी प्यार की शिद्दत को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत दर्द और भावनाओं को प्रकृति के विशाल कनवास पर उकेरा।

0: अब आते हैं साहिर की जिंदगी के सबसे चर्चित और अमर पहलू पर, अमृता प्रीतम के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत। ये वो प्रेम कहानी थी जो हकीकत में मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अदब में अमर हो गई। साहिर की इस अधूरी चाहत ने उन्हें कभी कभी जैसे कालजयी रचना करने के लिए प्रेरित किया। ये गीत सिर्फ एक प्रेम घोषणा नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक ख्याल है कि अगर जिंदगी उस मोहब्बत की छाओं में गुजरती तो कितनी खूबसूरत होती। 1976 की फिल्म कभी कभी से मुकेश साहब की भावुक आवाज में साहिर लुधियानवी की कलम का सबसे बेहतरीन रूमानी इजहार।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

साहिर लुधियानवी, जिन्होंने कहा था, मैं किसी गैर के आंखों का नूर क्यों बनूं, मैं किसी और के ख्वाबों में क्यों रहूं। अपने सिद्धांतों पर डटे रहने वाले ये महान शायर 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से हमें अकेला छोड़ गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक और जरूरी बात सिखाई, अगर कोई रिश्ता निभाना मुमकिन ना हो तो उसे बेवजह खींचने के बजाय एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। उनकी इस फिलॉसफी को दर्शाता फिल्म गुमराह से उनका ये विदाई गीत।

ये था आज का सफर मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी पर। आज के इस कार्यक्रम का सफर यही समाप्त तो होता है। मिलूंगी किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का एपिसोड आधारित था गीतकार साहिर लुधियानवी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति। You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hamsafar zindagi ka a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India।
1: Pesh hai karyakram Nari Ek Darpan episode 3। Aaj ke mehman hain Aishwarya Dhiman aur Jyoti Bagan। Prastutkarta आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सेजल, आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नारी एक दर्पण के तीसरे अंक में। पिछले दो अंकों में हमने बात की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज की बीड़ियां तोड़ आसमान की ऊंचाई को छुआ, महिला और बाल विकास की ओर काम किया, साथ ही साथ देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर गई और आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल के रूप में या कह लीजिए कि एक प्रेरणा के रूप में रूबरू हुई। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आज की पीढ़ी को ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज के महिलाओं की तरफ बदले रुख की, महिलाओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज के युवा किस प्रकार सफलता को पा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जो अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, एक जो बिजनेस वुमन है और गृहिणी भी, और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज की आत्मनिर्भर युवती भी। तो ज्योति और ऐश्वर्या, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सेजल हमें इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सेजल, एक्साइटेड।
0: हम आप दोनों से बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता आप दोनों को सुन पाए और जान पाए। तो शुरुआत करते हैं ज्योति आपसे। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें।
1: हेलो, मैं ज्योति बग्गन हूँ। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से की थी। देन मैंने अपना कोर्स किया चंडीगढ़ से वेब डिजाइनिंग का, प्रो डेवलपमेंट का। तो फिर उसके बाद मैंने मेकअप का भी कोर्स किया है और बाद में फिर मैंने मेकअप में फ्रीलांसिंग की है। एंड देन फिर मैं फिर से अम्बाला आ गई, फिर अम्बाला में आकर फिर उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद फिर बेबी, फिर उसके बेबी के बाद मैंने अपना एक न्यू बिजनेस खोला है, उसका नाम है द वेब आर्ट। और मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ और मैं हैंड कास्टिंग भी करती हूँ, हैंड इम्प्रेशन।
0: तो ज्योति, आपने बोला रेजन आर्टिस्ट और हैंड कास्टिंग, तो आप ये बता सकती हैं, क्योंकि बहुत यूनिक वर्ड है मेरे लिए भी और शायद श्रोताओं के लिए भी, तो ये चीज है क्या?
1: रेजन आर्ट में ये होता है कि आप अपनी कुछ भी चीज, मतलब जो क्योशिस चीज है, वो आप प्रिजर्व करवा सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ये आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है, ये केमिकल होता है, उसमें सब हमेशा के लिए प्रिजर्व हो सकती है अगर हम उसको इतनी ऊपर से फेंके तब भी नहीं टूटता वो। और हैंड कास्टिंग वो होता है जैसे बेबी हमारा 2 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो हम उसके हैंड कास्ट करवा सकते हैं। वो एक तरह से कास्टिंग होती है, वो जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो बड़े होकर देखेगा कि हाँ भाई ये हमारे मम्मी पापा ने करवाया था, हमारा हैंड का कितने छोटे छोटे हाथ थे हमारे और हम बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए एक मेमोरी रह जाती है लाइफ टाइम के लिए कि हाँ हम इतने छोटे छोटे थे।
0: तो ये सारा काम आप खुद ही मैनेज कर रही हैं इस वक्त या आपकी टीम है?
1: नहीं, ये मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। अभी हमारा स्टार्टअप है तो हमने कोई हेल्पर नहीं, सिर्फ हम दोनों ही करते हैं
0: जी। तो ज्योति, जैसे अभी आपने बताया कि आपने वेब डिजाइनिंग की, तो वेब डिजाइनिंग से आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ और ये कब आपने चीज डिसाइड की कि मुझे ये करना चाहिए?
1: जैसे वेब डिजाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो जैसे फोटोग्राफी, आफ्टर बेबी मैंने ना अपने बेबी का फोटोशूट किया, उसको एडिट किया, जैसे उसका नाम कीशू है तो मैंने कीशू के अंदर लेटर्स में फोटोज लगा दी, तो फिर मैंने ऐसी उसको फ्रेम करवा लिया, ऐसे ही मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने कहा कहाँ से बनवाया, किसी ने पूछा मेरे से कहाँ से बनवाया, तो मैंने कहा ये मैंने खुद बनाया है, तो कहते अच्छा कितने का बन जाएगा ये वो, मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया मुझे कि आपको ना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उससे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो मैं सिर्फ फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाती थी, बट उसके बाद मैंने जैसे थोड़ा सर्च किया तो मेरे एक्सप्लोर पेज पे वो आता था, जैसे रेजन आर्टिस्ट आर्ट का, तो मैंने इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें, तो मैंने उसमें एक साल किया पहले, तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही ट्राई किया कि हाँ ये कहाँ से सीख सकते हैं हम, तो मैंने यूट्यूब से ना इसको थोड़ा लर्न किया काफी। शुरू शुरू में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि हाँ ये कैसे, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ से वेंडोर वगैरह सब कुछ कैसे होता है, मोल्ड्स वगैरह, तो काफी दिक्कत आई, बट बहुत सही चल रहा है अब तो।
0: तो आप जैसे ये चीजें प्रिजर्व करती हैं, इन्हें एक तो प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, और ये चीजें हम अपनी लाइफ में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या क्या टाइप्स के आप प्रोडक्ट प्रिजर्व करते हैं?
1: जैसे मुश्किल, जो काम करता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, बट जो देखता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे हैंड कास्टिंग है, अब बेबी जब जैसे ग्रो होता है वो वापिस तो नहीं छोटा हो सकता ना, तो वैसे ही हम उनके हैंड कास्ट करते हैं, तो ताकि मेमोरी रह जाए हमेशा के लिए। तो फिर वैसे ही हैंड कास्टिंग और वैसे ही रेजन होता है कि जैसे एक बार बेबी होता है तो उसकी कॉर्ड वगैरह होती है, प्रेगनेंसी किट होती है, बेबीज के हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्व होता है। और एक जैसे शादी होती है, शादी एक ही बार होती है, तो उसकी जो वरमाला होती है ना वो हम लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं। जैसे अभी तेलंगाना में मेरे पास मैरिज थ्रेड ड्रॉप आती है तो वो प्रिजर्व करवाते हैं, और फ्लावर्स आते हैं काफी सारे, तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाते हैं।
0: जी ज्योति, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में और जानने के लिए, और हमारे श्रोता भी जरूर होंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता रूबरू हों ऐश्वर्या से भी, तो ऐश्वर्या मैं चाहूंगी आप अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रो दें।
2: जरूर, तो मेरा नाम ऐश्वर्या धीमान है एंड मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी अम्बाला डीसी मॉडल स्कूल से की है, जहाँ पे मैंने सब एक्टिविटीज की है, पढ़ाई से लेके को करिकुलर। स्कूलिंग के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब से, एलपीयू जलंधर। मेरी ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने बहुत सोशल वर्क में आई वॉज एक्टिव, और मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन सोशल अपने समाज की तरफ भी दे सकूं, और रेदर देन कि मैं सिर्फ पढ़ाई में रहूं, मैंने कोशिश किया कि वहां पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन जाए। और उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट का ऑफर मिला, और मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो वेरी हैप्पी कि अभी मुझे अपनी लाइफ एक अननोन सिटी जहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रेंजर अपना ज्वाइन किया और वहाँ पे अभी मैं सस्टेन कर रही हूँ, तो अभी यहाँ तक का सफर यही सब है।
0: तो ऐश्वर्या, मैं एक कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आप फर्स्ट इंजीनियर हैं अपनी फैमिली में से, तो ये इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गया?
2: हाँ, तो हुआ क्या कि फिफ्थ क्लास में मेरे पापा घर पे कंप्यूटर लेके आए, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने शुरू तो पेंट से किया या फिर गेम से किया, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हम इस कंप्यूटर, एक छोटी सी चीज़ है, उससे हम कुछ कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेज पे अपने उसको काम को लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट बना, और जब मेरे से कोई स्कूल में पूछता था कि आपका क्या गोल है, बड़े होके क्या बनना है, तो मैं यही बोला करती थी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि कंप्यूटर का वर्ल्ड बहुत वास्ट है, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। आई थिंक बचपन से फैमिली के थ्रू इंटरेस्ट बना स्टार्टिंग में, एंड उसी के ऊपर मैंने काम किया।
0: तो आप अम्बाला में ही पली बड़ी हैं, और एकदम से दूसरे शहर में जाना, वहाँ काम करना, वहाँ रहना, वहाँ का रहन सहन अपनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो एज एन फीमेल आपको क्या परेशानी आई, और एज एन पर्सन आपने अपने अंदर क्या डेवलपमेंट फील करी बाहर जाकर?
2: अगर मैं बताऊं तो पहली हर्डल तो घर पे थी, ऑल्दो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हाँ तू जा सकती है, सिटी दूसरी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा सा झिझक था कि अभी बेटी छोटी है, अभी बाहर जाएगी तो कैसे सस्टेन करेगी, खाना नहीं आता बनाना, तो वो सब घर में ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि पापा की वजह से मैं बाहर गई, और वहाँ पे जाके भी बहुत हर्डल्स थे, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे लैंग्वेज हर्डल था, मुझे नहीं आती थी उनकी लैंग्वेज और वो मेरे को नहीं समझ सकते थे, तो और खाना बहुत डिफरेंट है वहाँ पे, तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम थी। और वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट किया कि लैंग्वेज बैरियर हटाया धीरे धीरे, वहाँ के लोगों से भी घुले मिले, ऑल्दो इंग्लिश में वहाँ पे कन्वर्स करना पड़ता है, बट वहाँ के लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो कनेक्शन बन गया और आई थिंक अभी अच्छा चल रहा है. वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे अपना घर हो बैंगलोर. तो अभी वो स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ.
0: जी, जैसे आपने कहा कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस चीज़ में बाहर, और फैमिलीज को होना भी चाहिए. और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार आफ्टर योर 12th और आफ्टर 10th आपने जब कहा कि आप परस्यू करना चाहती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो फैमिली का उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज को लेकर?
2: जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की फैमिली ऐसे ही अपने बच्चे को सपोर्ट करे, वो जो भी करना चाहता है उसके साथ खड़ी रहे, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसको हौसला दे कि हाँ तुम खड़े होके अभी फिर से ट्राई कर सकते हो. मुझे लगता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया.
0: तो ज्योति, मैं यही चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने पहली बार उन्हें बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया?
1: मेरी फैमिली, इन लॉस भी बहुत अच्छे हैं. मेरी मम्मी और वाले भी बहुत अच्छे हैं. उन्होंने मेरी बेबी को संभाला और मेरी इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, आजकल तो सब कर रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम घर बैठ के क्या करोगे. तो उन्होंने इतनी हेल्प की है ना मेरी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉस है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है. और मेरी सिस्टर है जो मुझे सामान चाहिए वो ला कर देते हैं, कई बार मैं नहीं जा सकती तो वो जाते हैं. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट ना करते ना तो आज मैं यहाँ तक ना आती. और हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना कि अगर ना होती तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाती, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि तू क्या करेगी, तू घर बैठ. हम घर बैठने के लिए तो नहीं है ना, मतलब कि हमें घर के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए.
0: जी, तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नारी एक दर्पण में. फिलहाल जो दो युवतियां हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको कौन सा गाना पसंद है, और वो गाना हम अपने श्रोताओं को भी सुनाएंगे. तो ज्योति, आप अपना कोई मन पसंदीदा गाना बताएं.
1: बम बम भोले, मेरी बेटी को ना सॉन्ग पसंद है.
3: చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులు సులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికి చకచో.

0: गाना तो बहुत ही मधुर था और बहुत ही खूबसूरत भी और शरारत से भरा भी। और अब आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं हमारे दो खूबसूरत मेहमानों के साथ। ऐश्वर्या, आपने कहा कि आप सोशल वर्क से जुड़ी हैं, तो ये नेशनल सर्विस स्कीम सोशल वर्क से रिलेटेड रहा, तो आप इससे कैसे जुड़ी और कैसे इतनी कम उम्र में सोशल वर्क की तरफ आपका रुझान गया?
1: तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है मेरे दादाजी से हुई। तो वो हमेशा से एक देश हित भावना हमारे अंदर डालते आए हैं। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उधर हमें बहुत सारे क्लब थे जो हम ज्वाइन कर सकते थे, जैसे NCC, NSS थी। तो मुझे हमेशा से रहता था कि मैं किसी ना किसी माध्यम से अपने देश के काम आ सकूं या कुछ भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो मैंने सोचा कि हम NSS ज्वाइन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही NSS ज्वाइन किया था। धीरे धीरे हमें वहाँ पे जैसे ही जुड़े, उसके अंदर हम स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या फिर उनको कपड़े बांटते हैं। जैसे हॉस्टल में हम लोग काफ़ी जे क्या करते हैं, कपड़े ऐसे ही रखे होते हैं जो वो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हॉस्टल से कलेक्ट करके जो भी सामान किसी के काम आ सके वो सब कलेक्ट करके हम स्लम एरियाज में बांटने जाते थे। हमने कैंप्स लगाए हैं गांव के अंदर जाके, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हमने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग के लिए वहाँ पे अवेयरनेस की है कि आप चाहिए, या फिर हम स्कूल में जाके कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि बच्चों को नेशन से जोड़ सके। तो ये सब टाइप के काम हमने NSS में किए हैं। और मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है जब आप ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं। वहाँ पे इतने तरह तरह के लोगों से आप जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है आपके पर्सनैलिटी में, एंड आप अलग तरह से निखर के आ सकते हैं उसके माध्यम से।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि जीवन में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों को आपने कंप्यूटर से जोड़ा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा?
1: तो हम लोग कॉलेज से, हमारे पास लैपटॉप होता था, तो हम लोग उसे गांव में लेके जाते थे। सब बच्चों को वहाँ पे जो भी कॉमन प्लेस होती है, तो हम वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करते थे कि अपने बच्चों को भेजो, हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो वो सब गांव से बच्चे इकट्ठा होते थे, तो उनको एक तरह से हम टीचर बन के कभी चुप कराते थे, कभी दिखाते थे कि आप पेंट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हम जोड़ने की कोशिश करते थे बच्चों को, कि वो सिर्फ एक गाँव में ही सिमट के ना रह जाएं, उनको पता लगे कि बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमने भी उनके दोस्त जैसा बन के उनको सिखाने की कोशिश की है।
0: जी बिल्कुल, बच्चों के साथ एक बार खुद का भी बचपना याद आ जाता है और इस खूबसूरत दुनिया को उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। तो ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप भी इस तरीके के सोशल वर्क से जुड़ी हैं?
2: अभी तो नहीं, बट ना थोड़े टाइम बाद हम भी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं होती हैं, जो घर में होती हैं, बैठी होती हैं, उनको भी काम दें। जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है, तो हम उनको देंगे ताकि वो भी अपना स्टार्टअप करे, और फिर हम उनको आगे उनके प्रोडक्ट बनेंगे तो हम सेल करेंगे, हमारे पास भी एक न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा।
0: तो अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसमें आप किस तरीके के प्रोडक्ट अभी प्रोवाइड करने वाली है?
2: अभी आपने कभी सुना है मिठाई कैंडल?
0: नहीं, हमने तो दूसरी कैंडल ही लिया। ये मिठाई कैंडल क्या चीज है?
2: अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो हमने एक न्यू लॉन्च किया है, लड्डू कैंडल, मोदक कैंडल, घेवर कैंडल, गुजिया कैंडल, उसमें काफी सारी वैरायटीज हैं, तो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो।
0: तो ये कैंडल खाने वाली कैंडल है या जलाने वाली?
2: को देख के खाने का मन करेगा, बट वो वैक्स है, वो सोय वैक्स की होगी प्योर।
0: तो ये बहुत ही क्रिएटिव चीज है और नई चीज भी है, मैंने पहली बार ये चीज सुनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ज्योति, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जब कोई कुछ भी न्यू स्टार्टअप करते हैं, ऑफकोर्स काफी दिक्कतें आती हैं, और फिर कई बार तो कस्टमर भी हमें ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें
3: कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे कनेक्ट करे तो हम उनसे कई बार हाफ पेमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि फुल पेमेंट चाहिए होती है एडवांस में, क्योंकि कस्टमर अपना सामान बनवा कर भाग जाते हैं कई बार, तो ऐसे ही होता है। और फिर हमारे साथ हुआ था एक बार ऐसे, कस्टमर ने हाफ पेमेंट की, आई डोंट नो कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं मंगवाया हमसे। बट अभी तो फिलहाल हमारे पास उनका प्रोडक्ट पड़ा है अभी भी, तो वो हमने एज अ प्रमोशन यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं है। अब मेरे पास कोई न्यू कस्टमर आएगा, वो देखेगा कि कैसा है आपका ये रेजन, होता क्या है।
0: तो आपने जैसे बताया कि इस तरीके के अपने शुरू में फेस किए, तो जो अभी नए बिजनेस में आ रहे हैं इस वक्त युवा या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे, इससे कैसे वो बच सके?
3: बस यही बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा एडवांस पेमेंट करवाएं और अपने कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं कि हाँ हम सब प्रोवाइड करते हैं, कि हम फेक नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम अपनी सर्विस टाइम पे देते हैं। अगर थोड़ा लेट हो गया तो कुछ रीजन होगा इसलिए लेट हो गया, बट कस्टमर को भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ स्मॉल बिजनेस है, होता रहता है, थोड़ा लेट हो ही जाता है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि आपने लेट कर दिया, थोड़ा टाइम लगता ही है हर चीज में, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है ना।
0: जी जरूर, दिक्कतें तो हर एक काम में आती हैं, बस हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। और ज्योति, आपका काम बहुत ही यूनिक है, तो क्या कभी आपके किसी कस्टमर से ऐसी कोई यूनिक डिमांड आई है जिसे आप देखकर या सोचकर ऐसा लगा हो कि

0: बनाना मैंने सीखा नहीं इधर, लेकिन मैं बैंगलोर चली गई जॉब के लिए, और वहाँ का खाना बहुत ही अलग है हमारे इधर से। तो मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आई, तो कभी मार्केट में निकल गए सब्जी लेने, सब्जी वाले को बोला कि हमें भिंडी चाहिए, तो उनको नहीं पता है भिंडी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ और दे दिया। कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे रह के मुझे खाना बनाना आ गया है, तो अभी वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगी वहाँ की शादियों का, जो कि हमारे यहाँ की शादियों से बहुत अलग होती हैं। जैसे हमारे इधर शादियों में इतने गाने, बॉलीवुड, डीजे एंड बहुत लंबा सेलिब्रेशन चलता है, ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से लोग शादी रखते हैं, और वहाँ पे ऐसे डीजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनका खाना भी बहुत सिंपल, केले के पत्ते के ऊपर आपको सब 10 तरह की चीजें सर्व करते हैं, और आप वहाँ पे जाके बड़ी सादगी से बैठ के वहाँ पे खाना खाइए और शादी वाली फोटो खिंचवा के, और सुबह ही आपका 11-12 बजे तक सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद आप घर आ जाओ। तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रिंस था एक।
1: जी, नए अनुभव भी होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो ज्योति, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हमने सुना, क्या आपका बिजनेस रहा वो भी हमने जाना, काफी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहे, तो हम किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं?
2: मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है @thewebart_, तो आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योति, आपका काम बहुत ही क्रिएटिव है, और जानकर अच्छा लगा, एक नई जानकारी मिली है आज आपसे हमें। तो ऐश्वर्या, अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे।
0: ये सॉन्ग मैं अपने नेशन के लिए, टू बिल्ड इट, उसको डिवोट करना चाहूंगी। मैं 2 लाइनें गुनगुनाना भी चाहूंगी और चाहती हूँ ज्योति भी मुझे ज्वाइन करे इसके लिए।
3: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर नारी एक दर्पण। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जिनसे हमारी बातचीत चल रही है और अब हम हमारी बातचीत को युवाओं की तरफ लेकर जाएंगे और आजकल के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ऐश्वर्या, आप इस वक्त आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं और अभी हाल ही में आईटी में एक डेवलपमेंट हुई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसकी वजह से युवाओं के बीच इस बात की काफी चर्चा है कि एआई कहीं ना कहीं हमारी जॉब को खत्म कर सकता है, मैन पावर को खत्म कर सकता है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है?
1: मुझे लगता है एआई को अभी काफी टाइम हो चुका है हमारे लाइफ में आए हुए, लेकिन रिसेंटली अभी चैट जीपीटी आया है। यूथ में बहुत ही डर है कि हमारी जॉब से लेके चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एआई और ह्यूमन दो अलग अलग चीजें हैं। कभी एआई टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन के पास ऑब्वियसली इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी अलग होती है। तो जरूर कोई रिपीटेटिव टास्क होता है जो वो एआई हैंडल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे यूथ को कोई डिस्करेज होने की जरूरत है। तो जो भी एआई बनाने की स्किल है वो हम लर्न कर सकते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंड में आएगी वो हम यूज और लर्न कर सकते हैं, और इससे कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम नहीं होने वाला है। मुझे लगता है हाँ, जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपस्किल कर सकते हैं एंड कोई दिक्कत ऐसी खास आने वाली नहीं है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी जरूरी है। और एक चीज मैं अब करियर से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि आज के समय में जो बच्चे हैं या किशोर हैं, वो पढ़ाई को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या कह लीजिए स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज का। तो अभी आप दोनों इस स्टेज से निकली हैं, तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया और आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे टैकल कर सकते हैं इसे?
1: मुझे लगता है हम लोग स्कूल में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते थे, इस टेस्ट में हम फेल हो गए, जेईई एग्जाम नहीं हुआ हमसे, और ये छोटी छोटी चीजें तब हमें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके कहें तो वो सब चीजें उस टाइम पे बड़ी होती हैं, लेकिन उससे कभी डीमोटिवेट होके वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए बच्चों को। स्पेशली स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो भी हो जितना हो बच्चों को एल्डर से सीनियर से कनेक्ट रहना चाहिए और सोशलाइज कीजिए बाहर और चीजों को एक्सप्लोर कीजिए।
0: जी बिल्कुल। ज्योति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: हाँ, जैसे पहले मेरे को वेब डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, और फिर मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं आईटी फील्ड में जाऊँ। बचपन से वैसे मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि थोड़ा हमारा माइंड चेंज होता रहता है जब हम छोटे होते हैं, तो फिर हम जैसे बढ़ते रहते तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसमें चीज में इंटरेस्ट है। तो जैसे हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, हम उसको दिल से करेंगे, पूरी लाइफ करेंगे, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होता उसमें, सो एंजॉय से मजे से काम करते रहते हैं सब।
0: जी बिल्कुल, अपनी पसंद का काम हो तो कभी बोरियत भी फील नहीं होती। ज्योति, आप एक बिजनेस वुमन हैं, साथ में मदर भी हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं?
2: जो मेरा बेटा है ना, वो मेरे मम्मी पापा के पास रहता है एक्चुअली, तो मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, और वो भी मेरी हेल्प करवाता है, कई बार पैकिंग करता है वो, बल्कि 2.5 ईयर्स का है फिर भी पैकिंग में हेल्प करवाता है। तो मैं उसके आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करती हूँ, हमारा दोनों का एक पेज भी है किशु एंड मम्स क्राफ्ट हाउस, तो हम दोनों वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, काफी चीजें करते हैं अलग अलग, तो वो भी मैनेज हो जाता है। और जितना टाइम मिलता है मुझे, मैं अपना काम कर लेती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ।
0: जी, इससे बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल भी इंक्रीज होता है जब मदर उनके साथ कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अब भारत बदल रहा है, एक न्यू इंडिया बन रहा है, नया भारत बन रहा है, तो आपको क्या लगता है दोनों को कि इसमें महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है?
1: मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें एक साथ विमेन को आगे भेजना चाहिए और पीछे से सपोर्ट पूरा देना चाहिए, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें और उनको ऐसा ना कभी लाइफ में फील हो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन और वो बहुत किसी के ऊपर भार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विमेन भी अपना इंडिपेंडेंट होके घर भी संभाल सकें और अपने आप पैरों पे खड़े हो सकें और अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल कर सकें।
2: जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं अपना एक वर्क शुरू करना चाहती हूँ, जो बेरोजगार महिलाएं अपने घर बैठी हैं, उनको घर बैठे बैठे उनको कुछ काम देना है मुझे, तो ऐसे ही वो खुद भी कुछ, जैसे कोई अपना टिफिन बॉक्स वाला स्टार्ट कर सकता है काम, कोई अपना जो सिलाई होती है टेलर वगैरह वो कर सकते हैं, आजकल ऊन के स्वेटर बुनते हैं वो कर सकते हैं लोग, तो आगे जा मतलब ऐसे ही थोड़ा आपको खुद भी कदम बढ़ाने चाहिए। और ना मैं कहना चाहूंगी कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, सपोर्ट चाहे फैमिली का हो, हस्बैंड का हो, दोस्तों का हो, हर एक पड़ाव पर बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये अम्बाला कैंट का पहला रेडियो स्टेशन है, तो आप दोनों को यहाँ पर, आप पहली बार आई हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
2: यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन अगर मेरे पापा होते, मतलब माय ग्रैंडफादर, वो ना रेडियो सुनते थे डेली, तो होते तो वो मेरा भी ये प्रोग्राम सुनते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उनको इतनी खुशी होती है कि हाँ मैं ये सुनता हूँ तो मेरी इसमें पोती मेरी यहाँ पर आई है, उसकी आवाज आई है, वो बहुत इंटरेस्ट लेते, इतने खुश होते।
1: और मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हुए अम्बाला रेडियो जरूर सुनते हैं, तो वो मुझे बताते थे कि ऐसे अम्बाला का रेडियो अभी मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उनको इस रेडियो के थ्रू आवाज़ पहुँचा सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताकर।
0: जी, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, और मैं यही कहूंगी कि चाहे वो आपके साथ नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बातें हमारे पास करने को बहुत है लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है इस वक्त, तो इस कार्यक्रम को अंत की ओर लेकर जाऊंगी और चाहूंगी कि आप दोनों जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको एक संदेश दें, एक मैसेज दें, जो भी आप देना चाहती हैं।
2: जैसे मैं अभी एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और होम मेकर भी हूँ, तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लाइफ में भी, तो हमें उसमें से निकल करना, हमें आगे कदम बढ़ाना है, और जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें खुद अपने लिए स्टैंड होना है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई बैठा नहीं है कि हम ये आकर हमारे लिए करेगा, तो हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना है।
1: और मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने एल्डर से एंड अपने जो भी डिवोशनल बिलीव्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें, और आपके पैर हमेशा ग्राउंड पे होने चाहिए और आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखते रहिए, और हमेशा सपने लेते रहिए और उनके लिए काम करते रहिए।
0: जी, सपने देखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योति और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, अपने बारे में आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया। मैं और रेडियो विदस्ता आप दोनों के कुशल भविष्य की कामना करता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियाँ लेकर। अभी आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे मेहमानों के पसंदीदा गीत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे और सुनते रहे रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत।
2: जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान थे ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं।

0: जी जय श्री कृष्णा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आज हम एक नया कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं और जो इस समय आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर जो है fb.com/radiovitasta.com। आज का ये प्रयास बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, हमारे जीवन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है भगवद गीता जीवन का आधार। आज हमारे पास इस लाइव शो में बहुत ही जो हमारे पास गणमान्य व्यक्ति हैं वो इस शो में जुड़े हैं और आज हम बहुत ही सार्थक चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहेगा जैसे एफएम रेडियो वितस्ता पर हमेशा बना रहा है। और आज हम लाइव है रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज पर और साथ के साथ आज हम लाइव है सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। और श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे जीने का आधार है। एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जन्मा था लेकिन आज 21वीं सदी के हमारे आपके मानसिक कुरुक्षेत्र में भी उतना ही सटीक बैठता है। जी हां, हमारे आज के विषय विशेष लाइव शो का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार। हम भगवद गीता क्यों पढ़ते हैं और क्यों हमें पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा और उसके बाद जो आज के हमारे मेहमान जुड़े हैं उनके साथ मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। स्वयं को जानने के लिए सबसे विशेष बात यह है कि स्वयं को जानने के लिए हमें गीता को पढ़ना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पूरी दुनिया को जानने में लगे हैं लेकिन खुद को भूल गए हैं। गीता हमें खुद से मिलाती है। दूसरा, तनाव और अवसाद से मुक्ति। जब मन अशांत हो, निर्णय लेने में असमर्थ हो, तब श्री कृष्ण के विचार एक काउंसलर यानी काउंसलर की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कर्तव्य का बोध, ये ग्रंथ सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना कर्म कैसे किया जाता है। ये हमें सिखाता है कि पलायन यानी भागना नहीं है बल्कि परिस्थितियों का सामना करना ही जीवन है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अपनी नई पीढ़ी को गीता इसलिए पढ़ानी चाहिए ताकि वे सफलता में अहंकार से और असफलता में अवसाद यानी डिप्रेशन से बच सके। गीता उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। तो श्रोताओं और हमारे दोस्तों जो इस समय सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं आपको गीता जी के बारे में कोई जानकारी देने के लिए, कोई बात बताने के लिए। मेरा और हमारे रेडियो वितस्ता का यह प्रयास है कि आज इस मंच पर हम गीता जी उसके उपदेश को अच्छे से जाने, उनसे जाने जिन्होंने सारी जिंदगी इसमें यहां पर लगाई है। तो सबसे पहले मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर आशु गोयल जी का जो गीता परिवार के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष एवं लर्न गीता कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक है। आप गुरु कृपा के समग्र विशेष में हमारी महान आध्यात्मिक परंपरा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का महायज्ञ निरंतर करते जा रहे हैं। समाज की सेवा निरंतर आप अपनी साधना के भाव से करते हैं। ये learngita.com के एक ऐसे कार्यकर्ता है, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अगर मैं इनका परिचय आपको दूं तो बहुत सारा समय निकलेगा और डॉक्टर आशु गोयल जी हमारे साथ इस समय बने हैं तो क्यों ना हम उन्हें स्वागत करें और उनसे ही जानें कि डॉक्टर आशु गोयल जी कौन है। आपका आशु जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस मंच पर। जी आशु जी, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास।
1: सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही।
0: आशु जी आपकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच रही है, आप का जो माइक है क्या वो अनम्यूट है? जी बहुत बहुत कम आवाज आपकी आ रही है हमारे पास, आपको वॉल्यूम बढ़ाना होगा। आप जब तक आप आपकी वॉइस हमारे तक पहुंचती है, मैं हमारे दूसरे जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर है श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता जी, जो प्रभा मेरे पास। आशु जी आपकी आवाज नहीं आए। भास्कर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है।
2: ये आवाज हमें तो आ रही है।
3: जी जी जी हाँ लग रहा है उनके हेडफोन।
0: अब सर आपको मेरी आवाज मिल रही है?
3: हाँ जी आपकी आवाज आ रही
0: है। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर आशु गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो परिचय मैंने दिया वो बहुत थोड़ा सा है, और उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी श्रोताओं का मार्गदर्शन करेंगे और पूरे भारत वर्ष का मार्गदर्शन करेंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि इस रेडियो विस्टा के इस चैनल पर इतना सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि निगेटिव खबरों के कार्यक्रम करने की प्रवृत्ति तो मीडिया की बहुत अधिक होती है, लेकिन कुछ सार्थक कार्यक्रम किए जाए और उस कार्यक्रम से समाज को कुछ अच्छा भी हो रहा है, ये संदेश दिया जाए, ऐसे कार्यक्रमों का थोड़ा अभाव हम लोगों को दिखता है। लेकिन ऐसे में रेडियो वितास्ता ने आपके निर्देशन में ये जो पहल की है, इसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और ये बड़ी सुंदर बात है कि हम सब लोग मिलकर भगवद गीता जैसे एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ का, जिसने गत 5163 वर्षों में पूरे वर्ल्ड को दृष्टि दी जीवन जीने की, नेतृत्व किया, और केवल भारत के नहीं विदेशों के भी सभी मनीषियों ने भगवद गीता का

0: और आपसे मैं रूबरू इस समय हूँ, और इससे बड़ी खुशी का समय मोमेंट मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज अगर आप सही शब्द यूज करेंगे तो आज का ये शो हमारे जीवन के लिए सार्थक है। तभी हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है भगवद गीता जीवन का आधार, तो क्योंकि ये हमारी जीवन का आधार है, हमारे धर्म का आधार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा आज हमारे गेस्ट स्पीकर श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता जी का, जो प्रभारी है उत्तरांचल गीता परिवार के। और आज तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस गीता परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूं, और मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी मैं ऐसे ही रहूंगा। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
1: जी जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा
1: भारत जी, आशु भैया, भास्कर भैया, जय श्री कृष्णा। रेडियो विस्तृता सुनने वाले सम्मानित श्रोताओं में भारत सुपारी जी, भास्कर भैया और हमारे आदरणीय आशु भैया, तो जय श्री कृष्णा। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव जी की असीम कृपा से मैं उत्तरांचल प्रभारी मीनाक्षी गुप्ता अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे गीता जी की सेवा करने का मार्गदर्शन मिला।
0: जी,
1: उत्तरांचल में 7 स्टेट आती हैं, चाहे उत्तराखंड हिमाचल की पावन वादियों में, उत्तर प्रदेश दिल्ली का हृदय स्थल, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर की वीर भूमि हो, इन सभी राज्यों में गीता मैया का संदेश बहुत तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र में 200 से ज्यादा केंद्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अभी हाल में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे हमने गीता सहस्त्र नाथ जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, उसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में, यानी कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में गूंज रही है। 16 देशों से हजारों कंठों ने एक साथ गीता जी का दिव्य घोष किया। उस पूरा वातावरण सात्विक ऊर्जा से भरपूर कहा गया है। कुरुक्षेत्र जैसा भव्य और दिव्य गीता कंठ नाद अन्य प्रेरणा कार्यक्रम हम उत्तरांचल की भूमि पर फिर दोबारा दोहराने वाले हैं। ऐसा आशु भैया की प्रेरणा और गुरुदेव के आशीर्वाद से होने वाला है। जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा। गुरुदेव का आदेश और आप लोगों की जो मेहनत है, और आप लोग जो सकारात्मक संदेश पूरे भारतवर्ष को दे रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस मुहिम में, हम उस पहल में एक छोटा सा काम अगर कर सकें, और हम लोगों को अपने धर्म ग्रंथ गीता जी के साथ जोड़ें, और इससे बढ़िया काम और इससे बढ़िया जो बढ़िया कोशिश है वो कोई भी नहीं हो सकती है। आप दोनों का स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर। हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं भास्कर दास जी, और ये संयोजक है गीता परिवार जम्मू कश्मीर के। भारत भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप आशु जी का और मीनाक्षी जी का स्वागत और अभिनंदन अपने तरीके से और अपने शब्दों में करिए।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपके एफएम पे जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा नमस्कार। और मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का क्षण है कि मैं आशु भैया के समक्ष हूं और अपने मीनाक्षी दीदी के समक्ष हूं। हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उनमें सब उनका उत्साह है, मार्गदर्शन है, और सारी जो भी हम एक्टिविटी यहां पे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं उनका सबका जो दिशा निर्देश है वो सब आशु भैया के अनुसार हम करें, जैसे उनका निर्देश होता है। और मीनाक्षी दीदी हमें पूरा मार्ग देती रही, हमारे हर कार्य में सहयोग देती रहती हैं। हम चाहे छोटा से छोटा कार्य करें, बड़े से बड़ा कार्य, उसमें हमें रहती हैं। आशु भैया तो हमारे लिए दीपक हैं, सूरज हैं। जो कुछ हमें गीता परिवार से मिलना है वो उनसे मिल जाता है। और मैं आपको ये बताऊं कि गीता परिवार ज्वाइन करके हमको इतना शक्ति मिला है कि हम किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे हम बात कर सकते हैं अपने गीता जी के बारे में। ऐसा ज्ञान हमको अशुद भैया द्वारा और परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन हो करके मैं कह रहा हूँ कि ये जो गीता परिवार है, हम बड़े अच्छे से अपने एरिया में जम्मू कश्मीर में प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसकी विनती हो।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु गोयल जी और मीनाक्षी जी। मैं आप सभी को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज का ये बहुत ही पावन दिवस है, शुक्रवार है, और आज 5 जून 2026 है, और अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी है 2083 विक्रम संवत। क्योंकि ये हम सबको याद होना भी जरूरी है, इसके बारे में हमें याद

0: रखना भी जरूरी है। हमारी कोशिश है कि हम रेडियो के माध्यम से भी लोगों को ये जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी जो हमारे इस समय हमारे फेसबुक पे इसको लाइव देख रहे हैं या हमारे रेडियो के जो श्रोता सुन रहे हैं वो हमें इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए उनको केवल व्हाट्सएप कॉल करना होगा। नंबर है 7015913010 केवल इस पर अगर आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो ही हम इस शो में आपको ऐड करेंगे। आप अपनी कोई जिज्ञासा है वो आप जान सकते हैं। आज हमारे जो महानुभव हमारे साथ है उनसे आप भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खैर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डॉक्टर आशु गोयल जी और मीनाक्षी जी, बहुत सारे जो विचार है वो मेरे मन में भी है और हमारे श्रोताओं के मन में भी होंगे। हम सीधा कार्यक्रम की ओर आते हैं, समय को हम सदुपयोग करते हुए आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जिज्ञासा भी दूर करेंगे और साथ साथ हमारे जो श्रोता है उनकी भी जिज्ञासा दूर होगी। और कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सोशल मीडिया से। पूरन जी ठुसू लिखते हैं अति सुंदर मारा, और शशि जे भारती लिखते हैं जय श्री कृष्णा, पूरन जी ठुसू लिखते हैं जय श्री कृष्णा, और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। हम उन कमेंट्स को भी लेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे। डॉक्टर आशु गोयल जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे होगा। वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपसे प्रश्न कर सकूं, मेरा अनुरोध है कि आप मेरी जिज्ञासा को दूर करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के युवा
1: गीता का सारा काम जी वो सभी प्रश्नों का उत्तर देने ही है। और आप जब गीता माता के सेवक के रूप के प्रतिनिधि के रूप में आपने मुझे बुलाया है तो आप निसंकोच सारे प्रश्न करिए। मैं गुरु कृपा से, गीता माता की कृपा से, अपनी बुद्धि से उसका जरूर उत्तर देने का प्रयास करूँ।
0: तो गुरुदेव का नाम लेते हुए हम सारे लोग और मेरे जो श्रोता है और मैं खुद आपसे जानना चाहते हैं कि आज के युवाओं में एंग्जाइटी और भटकाव बहुत ज्यादा है। भगवद गीता एक युवा को मानसिक शांति और जीवन का सही लक्ष्य खोजने में कैसे मदद कर सकती है?
1: भगवद गीता एकमात्र ग्रंथ है जो हमको इस जीवन में और इस जीवन के बाद दोनों विजय होना सिखाती है
0: जी।
1: हम बहुत सारे मोटिवेशनल आर्टिकल्स देखते हैं, हम शोज देखते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स को सुनते हैं, वो इस जीवन में हम कैसे विजयी हों वो बात बतलाते हैं, लेकिन इस जीवन में
0: जी जी आशु जी जी जी आशु जी आपकी आवाज रुक गई। क्या हमारे साइड से
1: जैसे दसवीं कक्षा के विद्यार्थी को अगर उत्तीर्ण होना हो तो उसको सारे 5 सब्जेक्ट्स पास करने पड़ते हैं
0: जी।
1: मैं हिंदी में तो 100 में 100 ले आऊंगा, लेकिन अंग्रेजी में कम रह गए या गणित में कम रह गए या मैथमेटिक्स में कम रह गए तो मैं पास नहीं होता हूँ। इसी प्रकार जीवन में सिर्फ एक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वो पूरे जीवन में पीछे रह जाता है। भगवद गीता हमारे जीवन के संपूर्ण आयामों में हम कैसे आगे बढ़े वो हमको सिखाती है। हम अपना अर्थ कैसे मेंटेन करें, हमारा फाइनेंस कैसा मेंटेन है, हमारा परिवार कैसा मेंटेन है, हमारे जीवन के से और लोगों को सर्वभूतिते रता, मेरा जीवन केवल मेरे लिए तो नहीं है, मेरे जीवन में अन्यों के लिए मैं कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं प्रकृति के लिए कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं जीवों के लिए कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं उन मूक प्राणियों के लिए कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं भूमि के लिए, धरती के लिए, पर्वतों के लिए कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, इन सब बातों में भगवद गीता हमको लेके आती है। और ये सब करते करते मेरा मन बहुत बिखरा हुआ है कि सिमटा हुआ है, सुख दुख समय कृतवा लाभालाभ हो जय अजय। भगवान कहते हैं अर्जुन जीवन कैसा होना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसमें मन के अंदर समता आनी चाहिए। प्रसन्नता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन प्रसन्नता का और दुख का इंटेंसिटी क्या है, उसका लॉन्गिटिविटी क्या है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है कि नहीं है। कि तुम कोई सुख आया तो बस उसमें पागल ही हो जाते हो, कोई दुख आया तो उसमें डूबकर रोने के लगते हो, मुकेश के दर्द भरे गीत गाते हो, ऐसा तो तुम्हारा जीवन नहीं बन जा रहा है। थोड़े से दुख
0: आशु जी, आशु जी, आशु जी रोकता हूं, एक कॉल आया है। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम दिनेश पंडिता है।
0: जी जी दिनेश जी,
2: मुझे
0: जी जी बताइए।
2: मुझे वो प्रश्न पूछना था, भगवत गीता जीवन के आधार पर ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है बहुत जबरदस्त चल रहा है।
0: जी जी, आप पूछिए प्रश्न और आशु, डॉक्टर आशु गोयल जी आपकी आवाज सुन रहे हैं।
1: अभी आपकी आवाज नहीं है भास्कर जी।
2: आशु भैया प्रणाम, जय श्री कृष्णा। और मेरा प्रश्न ये था कि आजकल सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव हैं और हम इंस्टाग्राम पे सब लोग सब कुछ लिखते हैं, किंतु लिखने के बाद जब कोई उसके ऊपर कुछ कहता है तो हमारे अंदर उतना संयम नहीं रहता कि हम शांति से उसे सुन पाए। अभी एक इन्फ्लुएंसर ने आत्महत्या करने की चेष्टा भी की है। गीता जी हमें इसमें मार्ग किस प्रकार से दिखला सकती है?
0: जी धन्यवाद आपका। और आप सुनिए
1: जी, आपकी आवाज हम तक नहीं।
0: जी जी जी जी जी, एक मिनट सर। जी आप डिस्कनेक्ट करिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेता हूं। जी आशु जी, एक्चुअली जब कॉल आ जाएगा तो फिर सिर्फ कॉल की आवाज आएगी, उसके बाद मेरी आवाज आएगी। अब मेरी आवाज आपको आ रही है?
1: अभी तो आ रही है, लेकिन बीच में कॉल की आवाज भी नहीं है।
0: अच्छा, कॉल की आवाज भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जब हम कोई कमेंट करते हैं तो कोई कमेंट अगर सही नहीं आए तो हमें अपने मन में शांति कैसे आएगी, ये प्रश्न था इनका।
1: सोशल मीडिया, भगवान कहते हैं कि शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है
0: जी।
1: और दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरी शांति को बिगाड़ सके। मेरी शांति को कोई व्यक्ति नहीं बिगाड़ता, कोई दूसरा नहीं बिगाड़ता, मेरी शांति को बिगाड़ती है मेरी भीतर की स्थिति। जब मैं दूसरों के नजरिए को अपने जीवन में अधिक महत्व देता हूं तो उनका नजरिया मुझे सुखी या दुखी करता है, लेकिन जब मैं अपने नजरिए से अपने जीवन को जीता हूँ, शास्त्रों के नजरिए से अपने जीवन को जीता हूँ, अपने गुरु की, अपने महापुरुषों की दृष्टि से अपने जीवन को जीता हूँ, तो दूसरे क्या कहते हैं इससे मेरा मन प्रभावित नहीं होता। अन्य लोग सोशल मीडिया पे आकर कोई कमेंट करके चले जाएंगे और इससे मेरा मन बिगड़ जाएगा, तो मेरे मन की तैयारी कुछ भी नहीं है। मैंने अपने मन को कुछ ट्रेन नहीं किया है। जैसे एक ट्रेंड घोड़ा होता है और एक अनट्रेंड घोड़ा होता है, उस ट्रेंड घोड़े को दिशा का इशारा करने पर किस दिशा में मुड़ना है पता होता है, लेकिन अनट्रेंड घोड़े को वैसा पता नहीं होता है। ऐसे ही अपने मन की स्थिति होती है। मैंने अपने मन को किस प्रकार ट्रेंड किया है, मैं किन बातों का प्रभाव उसको जाने दूंगा, किन बातों का प्रभाव उसको कितना लेने दूंगा, ये मैंने ट्रेनिंग उसका किया है कि नहीं किया है, ये ट्रेनिंग करने के बाद भगवद गीता हमको सिखाती है। और जिसने वो ट्रेनिंग नहीं की उसको कोई भी आकर थोड़ा भी डिस्टर्ब करके जाता है और वो बेचारा एकदम हताश होकर घूमता है, ऐसा उसके साथ हो जाए।
0: यानी कि हमें अपना संयम जो है उसको बरकरार रखना होगा, और जब हम गीता जी के उपदेश को सुनेंगे तो हमारी जो पेशेंस लेवल है वो भी बढ़ जाती है और हमें हर प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता आ जाती है।
1: केवल ऐसी होती है कि संयम और पेशेंस ऐसा ही कोई भगवदगीता पढ़ने से बढ़ जाता है।
0: जी जी,
1: कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं
0: जी,
1: हमको दृष्टिकोण मिलता है कि क्यों और कैसे हम ये कर सकते हैं। भगवान से अर्जुन ने कहा कि मन की गति काबू करना तो बड़ा मुश्किल है, वायुरूप से दुष्कर्म, एकदम जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल है वैसे ही मन की गति को मुश्किल है। भगवान ने कहा एकदम मुश्किल है, तो अर्जुन का फिर कोई उपाय नहीं। भगवान ने कहा अभ्यास ये तो कौन थे वैराग्यण च गृह्यते, अर्जुन अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस करने से ये सारी बातें घटती है। तुम प्रैक्टिस करोगे, वैराग्य से जीवन जियोगे तो ये बातें घटेंगे। अब मैं रोज रोज मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, मेरे मन की ये इच्छा भी पूरी हो जाए, मेरे मन की वो इच्छा भी पूरी हो जाए, जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीने वाला है उसके जीवन में तो दुख और क्लेश बना ही रहने वाला है, क्योंकि मन की इच्छाएं तो कभी भी किसी की पूरी हो ही नहीं सकती। चाहे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होगा वो भी मन की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मन की इच्छा को कब पूरी करना और कब उसको ना बोलना, ये ट्रेनिंग देना, ये भगवद गीता हमको सिखाती है।
0: डॉक्टर आशु गोयल जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी वाणी इतनी पावरफुल है, और क्योंकि मैं आवाजों के साथ काम करता हूँ मैं गदगद हो रहा हूँ आपकी आवाज सुन के। खैर, हम ये बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, आपका समय आज हम जरूर लेंगे, मैं नहीं बल्कि मेरे जो श्रोता है, जो हमारे देश के जो वासी है वो हमें इस कार्यक्रम में जो है जुड़ने वाले हैं। और मैं अब मीनाक्षी जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। मीनाक्षी, आप मुझे ये बताइए कि आम व्यक्ति जानता है learngeeta.com से हम गीता जी के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपने उत्तरांचल के आप प्रभारी हैं, किस तरीके से आपने अपने जो लोगों को वो जोड़ा और उसके बाद learngeeta.com को कैसे हम सामने रखते हैं एक रास्ता बना के। मीनाक्षी जी,
3: जी जय श्री कृष्ण भाई,
0: जय श्री कृष्ण।
3: और मैं अपने एफएम के श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जो उत्तरांचल में हमने अपने सीजन भी किए हैं, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, हमने पहले वहाँ पे लंग गीता के बारे में बताया है, ऐप बताया है, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पे समय पे समय पे ऐप डाउनलोड करवाते हैं
0: जी जी,
3: और लंग गीता के बारे में बताते हैं
0: जी।
3: अभी हमारे लंग गीता में 15,000 कार्यकर्ता निष्काम सेवा दे रहे हैं
0: जी,
3: और 18 लाख लोगों ने भगवत गीता लंच किया।
0: यही
1: वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूवमेंट बन गया है
0: जी जी,
1: और 182 देशों से 16.5 लाख लोग रोज भगवत गीता सीख रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, पूरा कार्यक्रम पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 3,000 जूम क्लासेस करने वाला गीता परिवार ये अकेला संगठन पूरी पृथ्वी पर है जो 3,000 क्लासेस डेली कंडक्ट करता है, एंड वी कंडक्टेड इन 15 लैंग्वेजेस, एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड जापानीज, हमने जापानी भाषा में इसको आरंभ किया है। अभी तक तो हम भारतीय भाषाओं में इसको कर रहे थे, एक नेपाली भाषा और एक अंग्रेजी भाषा, इसको हम विदेश की मान लेते थे क्योंकि नेपाली हमारी होने पर भी भारत से बाहर है राजनीतिक दृष्टि से, इसलिए हम उसको, लेकिन अब तो हमने ईस्ट एशियन लैंग्वेज में जैपनीज में इसको स्टार्ट कर दिया है, और पूरे विश्व के 16.5 लाख साधक जुड़कर इसको 15 भाषाओं में सवेरे 4 बजे से रात के 2 बजे तक सीख रहे हैं, पूरा निशुल्क सीख रहे हैं, और इतना शुद्ध सीख रहे हैं कि वैदिक गुरुकुलों में जो उच्चारण सिखाए जाते हैं वो लर्न गीता की क्लासेस में सिखाए जाते हैं। आप अपने घर बैठे रोज 40 मिनट अपनी सुविधा से किसी भी समय देकर भगवद गीता का शुद्ध अध्ययन निशुल्क कर सकते हैं, ऐसी सुविधा पूज्य स्वामी जी की कृपा से गीता परिवार उपलब्ध करा रहे हैं।
0: डॉक्टर आशीष गोयल जी, ये जो बात है आपने विश्व की बात की, मैं कहता हूँ कि हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, हम इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने भी देरी की आपसे बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। वैसे तो हमने ये निश्चय किया है कि हर शुक्रवार को 11:30 बजे हम ये शो करेंगे, आपसे शुरुआत करने से हमारी जो प्रेरणा है वो बढ़ती है। और मीनाक्षी जी ने जो learngeeta.com के बारे में बताया, वो भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। मैं अपने सभी श्रोताओं को, हमारे देखने वालों को जरूर कहना चाहूंगा, इस शो को आप देखिए और उसके बाद आप जरूर learngeeta.com पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, अपने जीवन का जो रास्ता है उसको खोजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो रास्ता जरूर मिलेगा जहां पर डॉक्टर आशु गोयल जी ने अपना जीवन समर्पित किया है, गुरुदेव के साथ रह के अपना समर्पण किया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि डॉक्टर आशु गोयल जी के पास कभी समय होता होगा वो अपने बारे में और अपने बारे में सोचे। खैर, डॉक्टर आशु गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भास्कर जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। भास्कर जी, आप मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 36 वर्ष हो गए हैं कश्मीरी पंडितों के पलायन का, और आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर में learngeeta.com के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, कितना आसान है और कितना मुश्किल है?
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कुछ ठीक हो रहा है,
1: ठीक आ रही आवाज?
0: जी जी आ रही है। अच्छा जी, बोलिए बोलिए।
4: तो आशु भैया जी का एक सिंपल सा शब्द है, उसका कथन है कि जब आप भगवान किसी का कार्य प्रारंभ कर लेते हैं वो सब कर लेते हैं, हम निमित मात्र हैं। हाँ, ये है कि 2 साल पहले जब हमने मन सोचा कि गीता परिवार का हम कार्य करेंगे, तब तो कोई भी हम जानता नहीं था इस, क्योंकि मैं भी मोस्ट में सिर्फ किया हूँ, लोकल जो समाज है उनके साथ बैठा उतना नहीं था, तो मेरे को उतना जानकारी नहीं था। पर जब प्रारंभ एक बार भगवान कृष्ण भारती में साथ में रहे, हमारे यहाँ गोरंजी भैया हैं उनके साथ चल, हमने एक दो मिलते प्रतिभा दीदी है, ज्यादा दीदी डॉक्टर दीदी है, दीपा दीदी है, ये मिले थे, और लक्ष्मी हमारे हनुमान भी आए थे। हमने एक बात की भगवान का नाम लेके, तो फिर हमारे सेवक करते थे काम, आशीर्वाद चलते रहा, और आज की डेट में 235 लोग ऐसे हैं कि गीता का मुझे परिवार की सेवा ऐसे मिले। और इस समय हम लोग भी पुरस्कार के काम कर रहे हैं, कई बाल संस्कार शिविर करने का हमको कार्यक्रम बना हुआ तो हमने इन कर दिए। तो अतिरिक्त हम यहाँ पे जो जितने भी बड़े बड़े होते समाज होते हैं तो हम प्रयास करते अपने गीता परिवार उनपे अथॉरिटीज होते हैं मिलते हैं उनसे कर लेते हैं अपने परिवार के बारे में सबका एक सपोर्ट रहता है हो जाता है कि कोई काम वो जब हम लड़ रहे और आशु भैया जब बोल तो सब ना करने की आती नहीं है तो हमें के लाभ मिल जाती है हमको एंट्री मिल जाती है बड़े बड़े उत्सव में और फिर कार्यक्रम भगवान की दया से
0: जी जी भास्कर जी आप अपना नेट भी चेक करिए आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है और मीनाक्षी जी और डॉक्टर आशु गोयल जी हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर आशु गोयल जी मुझे बहुत जिज्ञासा अगले प्रश्न की हो रही है आपसे और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश जो है कर्म करो फल की चिंता मत करो आज के कॉरपोरेट और कॉम्पिटेटिव दौर में जहां सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड है इस बात को कैसे लागू किया जा सकता है।
3: आपकी आवाज नहीं आ रही भैया
0: मेरी सिस्टम तो
1: अभी मेरा म्यूट हो गया था।
0: अच्छा हाँ जी
1: भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक है
0: जी
1: जिसमें भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि
0: जी
1: इसका अर्थ प्राय थोड़ा गलत किया जाता है और उस कारण थोड़ा भ्रम भी निर्माण हो जाता है
0: जी।
1: मैं इस श्लोक के अर्थ के पहले एक दूसरा श्लोक आपको बतलाता हूं जिसमें भगवान ने किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 हेतु बतलाए। भगवान 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णंच पृथग्विधम विविधाश्च पृथग्चेष्टा दैवंच एवात्र पंचमम। अगर अर्जुन किसी भी कार्य को धर्म के कार्य नहीं अध्यात्म के पूजा के कार्य नहीं आपको जीवन में किसी भी कार्य में सफल होना है तो 5 चीजें करनी होंगी। इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही सफलता मिलेगी किसी भी कर्म में ये पक्की बात है। और उसमें पहली बात भगवान कहते हैं अधिष्ठानम यानी उद्देश्य। बिना उद्देश्य के बिना टारगेट्स के तुम जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव द गोल यू मस्ट हैव द करेक्ट गोल यू मस्ट हैव द फिजिबल गोल। तुम ऐसा गोल निर्धारित करते हो अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा ये मैंने गोल बनाया है तो ये मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। आई शुड हैव द एलिजिबिलिटी फॉर दैट। तो तुम्हारे गोल की एलिजिबिलिटी है कि नहीं ये चेक करो। तो पहली बात भगवान ने गोल की करी है अधिष्ठान की करी है। दूसरा कर्ता गोल तो है करने वाले लोग ही नहीं है। अब आपने FM चैनल चलाया लेकिन उसके लिए उतने योग्य एंकर्स आपके पास नहीं है तो आप वो कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए कर्ता भी चाहिए। अब अधिष्ठान भी है कर्ता भी है लेकिन साधन नहीं है हमारे पास। अगर ये इंटरव्यू करना है और ये हमारे पास माइक नहीं है हमारे पास इंटरनेट ठीक नहीं है हमारे पास सुविधा ही नहीं है स्ट्रीम का यार्ड का ये प्रोग्राम नहीं है तो हम ये सारा काम नहीं कर पाएंगे। ये काम करने के लिए हमको साधन चाहिए। तो जितने भी टूल्स रिसोर्सेस उसके लिए हमको चाहिए वो हमारे पास होने चाहिए। फिर ये सारी बातें होने पर भी तुम्हारी चेष्टा हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन तुम्हारे पास उसके लिए जितना एफर्ट डालना चाहिए वो तुम डालते हो कि थोड़ा डाल के सोचते हो कि काम हो जाना चाहिए। ज्यादातर लोग जो जीवन में अपने को असफल मानते हैं वो इसलिए होते हैं कि चेष्टा तो करते हैं लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते। जितनी चाहिए उतना ना इनपुट देने पर आउटपुट कम आएगा क्योंकि आउटपुट का निर्धारण तो इनपुट से ही होगा। इसलिए मैं चेष्टा पूरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ और ये चारों बात करने पर भगवान कहते हैं 5वां हिस्सा 20% ओनली यू हैव देव देव यानी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म। अब पूर्व जन्मों के कर्म तुम्हारे बहुत स्ट्रांग है बहुत सारे पुण्य तुम्हारे पास अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटेड है तो तुमने थोड़ा एफर्ट किया परिणाम ज्यादा भी दिखता है और पूर्व जन्मों का तुम्हारा अकाउंट डेबिट ज्यादा है तो फिर तुमने एफर्ट मारा लेकिन परिणाम तुमको आता वो नहीं दिखता है तो लोग परेशान होते हैं कि भाई देखो वो पढ़ाई थोड़ी करता है उसके नंबर ज्यादा आते हैं मैं तो दिन भर पढ़ता हूँ मेरे नंबर कम आते हैं। तो उसका कारण दिशा भी होती है उसका कारण कभी कभी दैव भी होता है। लेकिन दैव को पूरा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमारे गीता के चिंतकों ने कहा भगवान ने जो 20-20% का 5 रेशियो बतलाया इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि जहां पर जो 20% कम हो उसको चेष्टा से पूरा करो। दैव कम है तो चेष्टा बढ़ाओ साधन कम है तो चेष्टा बढ़ाओ तो तुम्हारा काम पूरा पड़ जाएगा। कई लोग कम साधनों में भी सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, क्यों? पुरुषार्थी होते हैं। हम मांझी जी का उदाहरण देखते हैं बिहार के, अकेले एक पहाड़ तोड़े, बिना साधनों के संकल्प के बल पर कितना बड़ा पहाड़ खड़ा तोड़ दिया उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। ये सामान्य बात नहीं है,
0: जीवन
1: लेकिन चेष्टा से दैव को भी बदला जा सकता है और साधनों की कमी को भी पूरा जा सकता है। इसलिए चेष्टा, एफर्ट्स, भगवान सबसे बड़ा फोकस इस पे करते हैं। अब मैं आता हूँ उस श्लोक पर जिसकी आपने चर्चा करी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की चिंता मत करो, भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, अर्जुन कर्म में प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, मुझे कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहूं करूं इस बात में मुझे कोई भी बंधन कभी कोई नहीं लगा सकता। मैं भी चाहूं तो सो जाऊं, मैं भी चाहूं तो खड़ा हो जाऊं, मैं भी चाहूं तो चलूं, नोबडी कैन स्टॉप मी, एवरी कर्म इज इन माय हैंड। लेकिन मा फलेषु कदाचना, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद मेरे कितने नंबर आएंगे ये गारंटी नहीं कर सकता, व्यापारी व्यापार करने के बाद कितना मुनाफा आएगा गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी काम में एफर्ट डालने के बाद कितना रिटर्न आएगा नोबडी कैन गारंटी। इसलिए भगवान कहते हैं मा फलेषु कदाचना, फल में तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन फल में अधिकार ना होने पर भी तुम्हारी कर्म करने में अरुचि नहीं होनी चाहिए, तुम कर्तव्य भावना से अपने कर्म को करो और कर्म करने में अरुचि ना रखो, ये बात भगवान वहां पर जोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों को टारगेट ओरिएंटेड काम करने चाहिए, लेकिन टारगेट से चिपकना नहीं चाहिए। गड़बड़ टारगेट लेने में नहीं है, गड़बड़ उस टारगेट से चिपक जाने में है। हम कभी कभी खबरें सुनते हैं और मन को बड़ी वेदना होती है कि एक दसवीं के विद्यार्थी के 95% आए और वो जाकर छलांग लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि 99 आने चाहिए, 99 नहीं आएंगे तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, जबकि बात सत्य नहीं है। 95% लाने वाले भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो वो आ तक पहुंचते हैं, और वो पास तो हुआ है, वो फर्स्ट क्लास तो पास हुआ है, ये विचार ना करके तो 99 आने थे और मुझे तो 95 आने के बाद कुछ बचा नहीं, वो जाकर छलांग ही मार देता है। अब ऐसा इसलिए हुआ कि वो कर्म के फल से चिपक गया, उसको उसने अपने आप को उस कर्मफल से डिटैच करना नहीं सीखा। गीता कर्मफल को टारगेट करना तो सिखाती है, लेकिन टारगेट होने पर भी हम उसे अटैच ना हो, हम डिटैच होकर काम कर सके, ये भी हमको सीखा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि चाहे हमारे जीवन कहीं पर भी बस रहा हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो साधारण जीवन जी रहा हो, और गीता जी का जो उपदेश है, जो हमारे गीता जी में कहा गया है, वो हमारे जीवन को सार्थक करता है और जीवन को आगे लेके जाता है। मीनाक्षी जी, आप दो जगह से जुड़े हैं, अगर आप एक जगह से एग्जिट करेंगे तो आप हमें विद्यमान ओर से दिख जाएंगे, क्योंकि जो जितने भी लोग जुड़ जाते हैं उतनी जगह। यस, तो मीनाक्षी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा आशु जी के पास जाने से पहले कि मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। भास्कर जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि learngeeta.com में हम कैसे रजिस्टर करें और किस तरीके से हम उस पर अपने आप को जोड़ सकते हैं।
4: एक दूसरी बात है, learngeeta.com वेबसाइट है, उसको सर्च करने पे वहां पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल मिलता है, लेकिन अगर डायरेक्टली करना है तो learngeeta.com
0: जी,
4: तो इसमें फॉर्म मिल जाता है। तीसरा तरीका ये भी है कि हम learngeeta का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लेंगे फॉर्म मिल जाता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, नाम, एक्स्ट्रा एड्रेस वगैरह, वो पूछ लेता है, तो मेरे पास 2 मिनट का काम है, ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसके लिए जूम ऐप का होना आवश्यक है आपके सिस्टम पे, ये सिर्फ 2 मिनट है, हमारे गीता के लिए बहुत ही सिंपल है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी जुड़ रही हैं, किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पा रही हैं। मुझे तो एक बार फिर जिज्ञासा जो है वो मेरी बढ़ रही है। मेरे धन्य भाग होंगे जब डॉक्टर आशु जी आपके साथ मेरी मुलाकात होगी, आपके आपका आशीर्वाद भी लें, क्योंकि जिंदगी में हम जो भी कुछ करते हैं बिना गुरु तो हमें ज्ञान नहीं मिलता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। खास करके अगर आवाज़ की दुनिया में कहें तो जो हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर जो रमेश मराठा जी हैं, वो मुझे हर दम हैंड होल्डिंग करते हैं और साथ लेके चलते हैं। मैं उनका नाम इसलिए यहाँ पे लेना चाहूँगा क्योंकि गुरुजन का आशीर्वाद हो तो जैसे आप गुरुदेव के साथ हमेशा चलते हैं और जो आपकी वाणी है वो फूल बरसाती है और लोगों का मार्गदर्शन भी करती है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न मेरे सामने है आपके लिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। गीता हमारे भीतर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस यानी रेजिलियंस कैसे पैदा करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1: भगवद गीता का मुख्य बात यही है कि जीवन में एक पतिक जी महाराज नाम के बड़े उत्तम संत हुए, उनका एक गीत है, कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है ये जीवन में होने वाली बात है
0: जी।
1: किसी का भी जीवन, हमने कितनी भी हिस्ट्री भी पढ़ी है, हमने आसपास भी अपने सब लोगों को देखा है, क्या हम में से कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है जिसके जीवन में केवल सुख और सफलता है? और या हम ऐसे भी किसी को जानते हैं जिसके जीवन में केवल दुख और असफलता है? ऐसा किसी का जीवन नहीं है। जैसे धूप और छांव, ये प्रकृति का नियम है, सवेरे सूर्य उदय होगा शाम को सूर्यास्त होगा, ये पक्की होने वाली बात है। इसी प्रकार जीवन के सारे सुख और जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी सफलताएं जीवन की सारी असफलताएं, ये आने और जाने वाली बात है। किसी के जीवन में केवल सफलता बनी नहीं रह सकती, किसी के जीवन में केवल असफलता भी बनी नहीं रह सकती। असफल व्यक्ति को अपना ठीक आकलन करना आना चाहिए। असफलता का समय दुख से रोने का समय नहीं होता, असफलता का समय अपने क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का समय होता है। गीता उस क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सिखाती है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरी कहाँ भूल हो रही है, मेरी कमी कहाँ पड़ रही है। अभी जो मैंने सूत्र बतलाया, भगवान का बतलाया हुआ, अधिष्ठानता करता कर्णन च पृथक विदम, मैं कहाँ पर पीछे जा रहा हूँ, क्या मेरे साधनों में कमी है, क्या मेरे एफर्ट में कमी है, क्या मेरे आकलन में कमी है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि उनका 15 लाख का नौकरी का पैकेज नहीं लग रहा। अरे आपकी एलिजिबिलिटी जब 5 लाख रुपए की है तो 15 लाख का पैकेज कैसे लग जाएगा? लेकिन मेरे दोस्त की लगी है इसलिए मेरी लगनी चाहिए। अब ये जो अपेक्षा लेकर रहेगा उसको तो जीवन में अपना जीवन असफल लगने वाला है, लेकिन वास्तव में वो असफल है क्या? हमने असफलता का पैमाना क्या चुना है? मेरे दोस्त जहां तक पहुंच गए मैं नहीं पहुंचा तो मैं असफल हो गया, ऐसा जो मानता होगा उसका जीवन तो बड़ा दुख में रहने वाला है, क्योंकि ये पैमाना तो कोई सही पैमाना है नहीं। हम सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, हम मित्र हो सकते हैं लेकिन मित्र तो कृष्ण और सुदामा भी थे। सुदामा कहे कि तो राजा बन गए और मैं तो ऐसा सुदामा हूँ, ये तो कोई मैं तो मेरा जीवन असफल हो गया, लेकिन सुदामा जी ने ऐसा नहीं माना। वो वहां रहने पर भी अपने को दारिद्र में भी उतना प्रसन्न रख पाते थे क्योंकि मैं कृष्ण जैसा बन सकता हूँ, ऐसा उनका विचार नहीं था। हम सब किसी दूसरे के ऐसा नहीं बन सकते। मैं भारत सपोरी जी इतना बढ़िया बोलते होंगे तो मुझे भी उतना बढ़िया बोलना आना चाहिए, ऐसा तो मेरी भावना होगी तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं जैसा आशु हूँ उससे बढ़िया आशु बन सकता हूँ, भारत जी जैसे भारत जी है उससे बढ़िया भारत जी बन सकते हैं। हम सब अपने से श्रेष्ठ बन सकते हैं। असफलता तब ज्यादा महसूस होती है जब हम दूसरे से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। भगवद गीता कहती है कॉम्पीट करना है तो अपने आप से कॉम्पीट करो, दूसरे से कॉम्पीट करने में तो तुम केवल या तो ईगो में आ जाओगे, अगर आगे निकल गए तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, देखो मैं उससे आगे निकल गया, और पीछे रह गए तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, अवसाद में चले जाओगे। तो ये दोनों पैमाने गलत हैं, दोनों पैरामीटर्स गलत है। वी नीड टू चेंज द पैरामीटर्स। हमारी सफलता और असफलता किसी दूसरे के कंपैरिजन में नहीं, हमारे अपनी कैपेबिलिटी के कंपैरिजन में है। गत पिछले वर्ष में क्या था, 2 वर्ष पहले में क्या था, 5 वर्ष पहले में क्या था, आज मैं कहाँ हूँ, ये जो आकलन करते हुए हम चलते हैं
0: जी, आगे हमें कहाँ पहुंचना है।
1: मेरे पास गाइड है, आपने अपने गुरु जी का नाम लिया, ऐसा कोई हैंड होल्डिंग करने वाला मेरे पास गाइड है कि नहीं जो मुझे बतलावे कि भाई मैंने अपने जीवन में क्या रखा है? ये बात मायने रखती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या सांस्कृतिक्षस्व भारत। अर्जुन, परिस्थितियां आने जाने, आगमा पायिनो, परिस्थितियां तो आने जाने वाली ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में एक ही परिस्थिति बनी रहेगी, इसलिए क्या करो, सांस्कृतिक्षस्व भारत, इनको सहन करना सीखो। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी सुख दुख शीत उष्ण सुख ये बना रहेगा नहीं, लेकिन इसको, अब कोई सर्दी के मौसम में परेशान हो गया कि ये तो सर्दी है मैं तो जी नहीं पाऊंगा, तो उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तो गर्मी आने वाली है। ऐसा कोई समय नहीं है कि हमेशा सर्दी रह जाएगी, हमेशा गर्मी रह जाएगी। जैसे ये मौसम बदलते हैं, ऐसा जीवन का सुख दुख भी बदलता है। मात्रा स्पर्शास्त्र होते हो, हमको सारी बात मात्रा से परेशानी करती है। मात्रा क्या होती है? जैसे सब्जी में नमक, वो कम अच्छा है नहीं, कम भी अच्छा नहीं, ज्यादा अच्छा है ज्यादा भी अच्छा नहीं। कितनी मात्रा में बढ़ा उतना बढ़िया है, कम हो गया तो भी भाता नहीं, ज्यादा हो गया तो भी भाता नहीं। अभी हमारे आसपास का टेम्परेचर है 25 डिग्रीज है तो बड़ा सुखद है, 25 है नीचे जाता है तो हमको ऊपर से लेयर्स कुछ डालनी पड़ती है
0: जी।
1: और 25 ऊपर चला गया तो फिर हमको कुछ एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है, पंखा लगाना पड़ता है। तो ये सारी बात मात्रा की है। जीवन में इस मात्रा का सही आकलन और उस मात्रा का सही मैनेजमेंट, ये हमको सफलता और असफलता से को सही देखना भी सिखाता है, उसको सही ट्रीट करना भी सिखाता है। और ये भी समझ में आता है कि कुछ भी टिकता नहीं है, ये भी गुजर जाएगा, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु गोयल जी। और इस समय में जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सोशल मीडिया पर और रेडियो वितस्ता पर, और मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैंने कुछ कॉल्स को रोका और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बोलने में कोई व्यवधान पड़े और हम आपको सुनते रहें। और आने वाले समय में जब ये शो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी ये हमारे फेसबुक पेज पर रहेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आशु जी को सुने क्योंकि आज ये हमारे साथ, हमारा सौभाग्य है ये हमारे साथ बने हैं। और जो इस समय कॉल कर रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपकी हम कॉल लेते हैं तो जो हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें व्यवधान आता है तो आने वाले दिनों में हम इसका कुछ विकल्प ढूंढेंगे। आज के लिए क्षमा। और डॉक्टर आशु गोयल जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूंगा। डॉक्टर आशु गोयल जी कब समर्पित हो गए इस गीता उपदेश के लिए, गीता भाव के लिए?
1: मेरा बचपन से मेरा जीवन मेरे पूर्वजों की कृपा से, हमारे दादाजी हमारे पिताजी का स्वभाव देखकर, हम बचपन से गीता भवन जाते थे, ऋषिकेश जाते थे। बचपन से सत्संग में लगे रहना, कथाओं में प्रवचनों में रहना, ये हमारा मन का स्वभाव हो गया। गंगा जी नहाना, घाट की सफाई करना, ये हमारे सबसे प्रिय काम होते थे। तो हम महीनों महीनों ऋषिकेश भी जाकर रहते थे। और पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया कि जीवन में धन का महात्म्य, जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं उतना ही है, उससे अधिक नहीं है। इसलिए हम लोग व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन धन के लिए जीवन बेटा मत जीना। तो मैं बहुत छोटा था तब पिताजी ने मेरे मन में ये बात ठहरा दी कि केवल धन जीन कमाने के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। फिर पूज्य गुरुदेव मुझे बहुत कम आयु में प्राप्त हो गए और 17 वर्ष की आयु में मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और उसके बाद तो मुझे मार्गदर्शन मिल गया और स्वामी जी ने उंगली पकड़कर हमको आगे ले गए। वास्तविकता यह है कि लोगों को लगता है कि हम अपना जीवन किसी अर्थ के लिए समर्पित करते हैं तो हमको कुछ बड़ा त्याग करना पड़ता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी है और हम सब कुछ भी छोड़ते हैं वो तभी छोड़ते हैं जब कुछ बड़ा मिल जाता है। जैसे हम छोटे बालक थे तो एक छोटी सी बॉल के लिए हम भाई बहनों से, दोस्तों से बड़ा झगड़ा कर लेते थे और माता पिता कहते भी थे हम तुम्हारे को दूसरी बॉल दे देंगे, ये वाली तू छोड़ दे, तो हम कहते थे हमको तो यही वाली चाहिए और हम उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते थे। लेकिन थोड़ा 10-5 साल बाद वो बॉल वहीं पड़ी रहती है घर में और हम उसकी ओर देखते भी नहीं है। बॉल वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन देखने की वृत्ति बदल गई क्योंकि अब मुझे बड़ी बॉल्स मिल गई, अब मुझे बड़े खिलौने मिल गए। बड़े खिलौने मिलने पर छोटा खिलौना छूट जाता है। ऐसे ही भगवद गीता जैसा विश्व का सबसे बड़ा प्रसाद मिल जाए फिर किसका मन दुनियादारी में और संसार में लगने वाला है। तो मैं इसलिए स्वामी जी की कृपा से भगवद गीता का प्रसाद पा गया और अब मेरा जीवन मैंने भगवद गीता में ही समर्पित, उसका आनंद लेने का समर्पित किया। ऐसा मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया होगा, वास्तविकता में तो मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ किया है ऐसा मानता नहीं हूँ। इसलिए मैं तो केवल पा रहा हूँ, आनंद पा रहा हूँ, उद्देश्य पा रहा हूँ जीवन का और उन महापुरुषों की संगति पा रहा हूँ जिन्होंने भगवद गीता के सानिध्य में अपने जीवन को आनंदित किया है, सफल किया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु गोयल जी। और हमने इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा है भगवद गीता जीवन का आधार। वाकई ये जीवन का आधार है और मैं कश्मीरी पंडित हूं और 36 वर्षों से विस्थापन में रह रहे हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने खोया क्या है, हमने हमेशा सामने ये रखा कि हमने पाया क्या है। और ये रेडियो वितस्ता भी उसी कई सारे वर्षों की मेहनत है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे इस समय रूबरू हूं और आपसे बात करता हूं। मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
3: जी जी जी मिल रही है।
0: मीनाक्षी जी, आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उत्तरांचल में जब आप कार्य करते हैं, जब आप अपने लोगों के साथ, अब लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, गीता जी के साथ जोड़ते हैं, तो एक अनुभव जो व्यक्तिगत अनुभव है वो कैसा रहता है?
3: बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है, ऐसा लगता है कि बस गीता जी में ही समा जाओ। अब जीवन का अर्थ ही गीता लगता है
0: जी।
3: अब लोगों में जब जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि गीता के अलावा तो है ही नहीं
0: जी।
1: हमारे पांच अंचल है गीता परिवार के
0: जी।
1: एक दक्षिणांचल है, पूर्वांचल है, एक पश्चिमांचल है, एक मध्यांचल है और एक उत्तरांचल है। पूरे भारत को इस प्रकार पांच वर्गों में बांटा है। हमारी मीनाक्षी दीदी पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करती है और एक बहुत बड़ी उद्योगपति होने के बाद भी वो पूरा समय घूम घूम कर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और इन सब राज्यों में घूम घूम कर हरियाणा में ये सारा गीता का विस्तार करना। केवल गीता का विस्तार नहीं, गीता परिवार की एक और प्रवृत्ति है बाल संस्कार केंद्र
0: जी।
1: तो छोटे बच्चों को संस्कार केंद्रों पर जोड़कर उनको कुछ खेल खिलाना, कहानी सुनाना और वहां पर उनको गीता जी सिखा देना, स्तोत्र सिखा देना, जीवन के मूल्य वैल्यू एजुकेशन दे देना, ये सारा संस्कार केंद्रों का नियोजन हमारे भास्कर भैया जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का हमारा पूरा दायित्व अध्यक्ष के रूप में, संयोजक के रूप में हमारे भास्कर भैया संभालते हैं। तो ऐसा ये सारा कार्य अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रभागों में ये जो चलता है उसमें उत्तरांचल प्रभाग का दायित्व हमारी मीनाक्षी दीदी संभालती है और बड़ी उत्तम ढंग से पूरे समय प्रवास करते हुए आप विश्वास नहीं कर सकेंगे, एक महिला होकर भी और एक विद्यालय की संचालिका होकर भी, कॉलेज चलाते हैं वो और इतना बड़ा सब उनका बिजनेस है, एम्पायर है, उन सब को छोड़कर जब भी किसी कार्यकर्ता का फोन आता है कि दीदी हमारे एक कार्यक्रम में आपको पहुंचना है, वो अपनी गाड़ी लेती है और तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। ये उनकी विशेषता है और इस प्रकार के समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनको बदले में कोई नहीं चाहिए, ना फोटो चाहिए, ना माला चाहिए, ना कहीं पेपर में अपना नाम चाहिए, ऐसे 15,000 कार्यकर्ताओं के द्वारा गीता परिवार लर्न गीता आज पूरे विश्व के 182 देशों में।
0: डॉक्टर आशु गोयल जी, बहुत सारे कमेंट्स हमारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं वहां देखूं। एक कमेंट मैंने देखा, वीना कॉल जी लिखती हैं, मेरी ओर से डॉक्टर आशु गोयल जी को प्रणाम और जय श्री कृष्ण कहना। और मैं ये मानता हूं कि ये हमारा परिवार है जो हमें इस समय भी और हमेशा जब भी हम कोई सार्थक मंच यहाँ पर तैयार करते हैं, कोई विशेष बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज मैं सभी हमारे सुनने वालों और देखने वालों को जरूर कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैंने आपके कुछ कॉल्स नहीं लिए क्योंकि मैं व्यवधान नहीं चाहता था। अगली बार जब हम ये शो करेंगे तो हम कुछ विकल्प इसका तैयार करेंगे। आप जरूर हमारे कमेंट्स में,
1: आप कमेंट्स में प्रश्न मंगा सकते हैं।
0: हाँ मैंने उनसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि वो जरूर कमेंट्स में लिखें और हम आपके कमेंट्स का जो रिप्लाई है आशु जी से लेंगे और आप तक वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसा पुल बने जिससे हम एक दूसरे से प्रेरित होकर कुछ जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ अच्छा और सकारात्मक कर सकें। आशु जी, इस समय हमारे इस कार्यक्रम के 50 मिनट हो चुके हैं और मुझे आशा है कि ये जो 8 मिनट हमारे पास बचे हैं, हमने सोचा था कि हम एक घंटे से पहले ही इस कार्यक्रम का,
1: सुखद सूचना देता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर से हैं और कश्मीर में और जम्मू में हम लोगों ने इतने सारी दुर्घटनाओं को देखा है, लेकिन उसके बीच में एक सुखपूर्वक, मैंने अभी भी अपना डेटा निकाला और हमारे टीम को पूछा तो जम्मू कश्मीर में इस समय 6,470 लोग भगवद गीता सीख रहे हैं। 6,470 तो 6,470 तो ये एक बड़ा नंबर है और इतने लोग भगवद गीता अपने स्थानों से बैठकर learngita.com के माध्यम से वहां पर सीख रहे और पूरे भारत के और विश्व के अलग अलग प्रभागों में भी 16.5 लाख लोग। आप अपना बात,
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशु जी आप के होते हुए मैंने ज्यादा प्रश्न मीनाक्षी दीदी से और भास्कर जी से नहीं किए। हम चाहते हैं कि जितना समय आपका हमें आज मिले वो सबसे बेस्ट है। एक और आपसे प्रश्न करना,
1: हम सब एक है, इसका मत करो, हम सब एक है।
0: जी जी मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि आज के दौर में रिश्तों में बहुत जल्दी कड़वाहट आ जाती है। गीता के उपदेश हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत और प्रेम पूर्ण बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आज हर घर में कोई न कोई समस्या है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका भी निदान करें।
1: भगवद गीता के अलावा किसी भी अन्य ग्रंथ में इस प्रश्न का उतना बढ़िया उत्तर नहीं मिला है।
0: जी
1: भगवद गीता कहती है सभी जीवन की समस्याओं का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं, और आशा पाश तेरबद्धा कामक क्रोध परायणा, ये जो आशाएं हैं इसके कारण जीवन में सारा दुख होता है। किसी भी परिवार में जो झगड़े हैं, किसी भी परिवार में जो कलह है, वो लोगों के कारण नहीं होती, एक दूसरे से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके कारण होती है। और इसलिए भगवत कहती गीता कहती है कि ये आशा का पाश है, ये गले की फांसी है, इसको तुम छोड़ो, और ये छोड़ते ही सारा काम हो जाएगा। हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे को दुख देता है, या सामने वाले व्यक्ति के कारण मेरा जीवन खराब हो रहा है, ऐसा हम सब लोग ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन सत्य बात ये नहीं है। सत्य बात ये है कि वैसा ही व्यवहार दुनिया में कोई और कर रहा है तो मेरा जीवन तो नहीं बिगड़ रहा है
0: जी।
1: इसी व्यक्ति के उस व्यवहार से मेरा जीवन क्यों बिगड़ता है, क्योंकि इस व्यक्ति से मैंने मन की अपेक्षा मानी है कि इस व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को मुझे ऐसी बात करनी चाहिए, इस व्यक्ति को मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और इस कारण से हमारा मन सुखी दुखी होता है। प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज नाम के एक वृंदावन के इस शताब्दी के अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रवर्तक हुए। उन्होंने एक सूत्र दिया, उन्होंने कहा परिवार में झगड़े मिटाने हैं, एकदम आसान बात, दूसरे का कर्तव्य तुम्हारा अधिकार नहीं। एकदम मौलिक सूत्र है, हम दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मान लेते हैं। मेरे बालकों को मुझे प्रणाम करना चाहिए कि उनका कर्तव्य जरूर है, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। मेरी सेवा मेरे छोटों को करनी चाहिए, मेरी बात मेरे छोटों को माननी चाहिए, उनका कर्तव्य अवश्य है, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। हम दूसरे के कर्तव्यों को जब अपना अधिकार मानते हैं तो उसके कारण परिवार में झगड़े भी होते हैं और अपना जीवन भी अशांत हो जाता है। भगवान कहते हैं प्रशांतात, अपना जीवन कैसा करना, जैसा प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत क्यों है, कि शांतता की मूर्ति है, वहां जाओ तो शांति, इसलिए उसका नाम प्रशांत महासागर। वैसी जीवन की प्रशांतता होनी चाहिए, हमारा जीवन सागर की तरह शांत हो जाए। सागर के मध्य में जाने के बाद वहां पर कोई शोर नहीं है, वहां पर अनंत शांति है, उस प्रकार की शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए, और वो तब होगी जब हम अपेक्षाओं की रस्सी से अपने को छुड़ाएंगे, हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन करना बंद करेंगे। लोग हमसे जुड़े हैं इसका कारण लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे, ये कारण ही हमारे दुख का कारण है, कि हम इससे छूट जाए छूट जाए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को मुझे समाप्ति की ओर लेना पड़ेगा। मेरे पास कुछ कमेंट्स है, मैं सबको तो नहीं पढ़ पाऊंगा। एक सुनीता पंडिता का कमेंट हमारे पास है, वो कहते हैं कि आशु भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और गुरुदेव का के चरणों में हमारा नमन। तो और भी बहुत सारे कमेंट्स है जो इस समय मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो जरूर मैं बाद में इनका जो रिप्लाई है वो जरूर करूंगा। इस कार्यक्रम के समापन के ओर मीनाक्षी जी आपको हम दोबारा आमंत्रण देंगे इस कार्यक्रम में अगले शुक्रवार को, या और उसके बाद का जो कार्यक्रम होगा आपसे विस्तार में बात करेंगे। आज मैंने जानबूझ के, मुझे मेरा मन किया कि आज आशु जी का ज्यादा से ज्यादा समय लिया जाए। और मीनाक्षी जी आज आप इस पटल पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, यही प्रश्न मेरा आशु जी से भी होगा और यही भास्कर जी से भी होगा, पहले आपसे जानना चाहूंगा। आपका अनम्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट होगा शायद माइक। जी
3: मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि learngeeta.com को ज्वाइन करें और गीता सीखें
0: जी,
3: गीता पढ़े पढ़ाई जीवन में लाएं
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भास्कर जी आप क्या कहते हैं इस समय आप इस एक पूरे एक 60 मिनट से हमारे साथ जुड़े हैं, आपने भी आशु जी को सुना और आप ऐसे इन्हें सुनते हैं, मैं तो गदगद हुआ आज इन्हें सुन के। और श्रोताओं के लिए एक जो हमने मंच तैयार किया ये क्या हम जो प्रथा हमने शुरू की क्या इसको हम जारी रखेंगे, आपका सहयोग हमें कितना होगा। हर शुक्रवार को 11:30 बजे ये शो जरूर होगा हमारे फेसबुक पेज पर और साथ में रेडियो वितस्ता पर भी।
4: जी दो बातें, एक तो आपने बोला कि दर्शक को क्या कहना है, मैं जब हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं तो जैसे प्रायर के लिए गए तो गीता के श्लोक पढ़ते हैं, तो जनरली वो हमको बोलते हैं इसका अर्थ समझाइए, तो उसके लिए हम बोले अर्थ जानने के लिए आपको धर्म की तरफ आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके अंदर खुद उसमें अनुभव लेंगे, आप दूसरों को बोलेंगे कृपया आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ अर्थ जानने से आउट नहीं होती है। स्वामी जी का कथन है गीता पढ़िए पढ़ाइए और जीवन में लाइए, तो हम यही निवेदन सबसे करें कि आप जीवन के लिए पढ़ लीजिए उसके बाद जीवन में ला से उसका प्रभाव होता है, तो ये एक बात है जो आपने प्रैक्टिस पढ़ा। दूसरी ये कि कार्यक्रम को कंटिन्यू करने के हम तैयार हैं, मेरा तो सौभाग्य है हमारी टीम के लिए तो सौभाग्य है अंदर है कि प्रभारी आकाश दीदी हमारे बीच और आपसे भैया हमारे हमारे लिए तो वो भगवान प्राप्त करने की खबर है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर आशु गोयल जी, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगा, आप हमारे श्रोताओं को हमें और इस कार्यक्रम के बारे में इसके रूपरेखा के बारे में कुछ कमियां जरूर रह गई आज जो हम आने वाले कार्यक्रमों में पूरी करेंगे, और साथ में गीता जी ये कहती है कि आप कर्म करें आप फल की चिंता मत करें। जब से हमारा विस्थापन हुआ है मैंने हमेशा अपने जीवन में अपना कार्य किया है और उसके फल हमें जरूर मिले हैं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि फल नहीं मिले हैं। तो आज भी एक अच्छी सोच से हमने इस मंच की तैयारी की शुरुआत की और आपने इसका आज उद्घाटन भी किया और आपने अपना जो स्नेह है प्रेम है वो हमें दिया। तो आखिर में हमें हमारे सभी श्रोताओं को और सोशल मीडिया के जो हमारे कमेंट्स आए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे?
1: वितस्ता ये कश्मीर की झीलम नदी का प्राचीन नाम
0: जी,
1: है।
0: जी
1: आपको उस नाम से इस चैनल का आरंभ किया इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने का उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास ये बड़ा सार्थक प्रयास है
0: जी।
1: और सार्थक प्रयास में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रति शुक्रवार करने का जो निर्णय आपने इस चैनल के माध्यम से किया है उसके लिए भी मैं बहुत साधुवाद अभिनंदन हमारी शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ। भगवद गीता और हमारा संपूर्ण भारतीय वांग्मय हम लोगों को एक मार्ग की ओर इंगित करता है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, ये मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से मिलता है और जो 60-70-80 साल का जीवन मिला है ये साधारण नहीं है। इस 60-70-80 साल के जीवन में हम धन के पीछे भागते भागते परिवार बच्चों का पालन करते करते उलझनों में संघर्ष में व्यतीत करके इस जीवन को गंवा भी सकते हैं और इस जीवन को भगवद गीता के प्रकाश में संभाल कर सुधार कर सुंदर बनाकर इस जीवन को जी भी सकते हैं। हम जिंदगी गुजार रहे या जीवन को जीना सीख रहे इन दोनों का अंतर करना होगा तो भगवद गीता का प्रकाश पाना होगा और भगवत गीता का प्रकाश ये learngita.com के माध्यम से एकदम निशुल्क उपलब्ध है। पूज्य स्वामी जी ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का चिंतन है, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए और उस सूत्र वाक्य को लेकर गीता परिवार ये काम कर रहा है। लर्न गीता हर कर गीता हर घर गीता इस ध्येय वाक्य को लेकर चल रहा है, हर हाथ में गीता होनी चाहिए हर घर में गीता होनी चाहिए और जैसा जीवन भगवत गीता के प्रकाश में अल्बर्ट आइंस्टीन हो चाहे आदिशंकराचार्य हो चाहे गांधी जी हो चाहे स्वामी विवेकानंद हो चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन हो चाहे ओपेनहाइमर जो परमाणुजनक बम के आविष्कारक है चाहे रोमारोला है चाहे बराक ओबामा है चाहे अमरसन है चाहे कॉल जंग है चाहे विल्किंस है चाहे ह्यूमन हिट्स है, मैं कितने भी नाम ले सकता हूँ पश्चिम के भी और भारत के भी सभी अत्यधिक प्रबुद्ध विचारकों ने भगवदगीता के सानिध्य में अपने जीवन का प्रकाश पाया है, हम भी पाए आपके चैनल के माध्यम से। मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग गीता से जुड़े अपने जीवन को संभाले और इस जीवन को जीना सीखे, गीता जीना सिखाती है, हम सब लोग जिए। सबको बहुत बहुत आभार, आपका आभार, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, सभी को जय श्री कृष्ण।
0: इजाजत लेने से पहले आज्ञा लेने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि एक कार्य देना चाहूंगा अपने हक से कि वो learngita.com पर रजिस्टर करें और कमेंट्स में जरूर लिखें कि किस किसने किया। हमारे साथ मध्य प्रदेश से देशराज जी हैं और वो कहते हैं कि इससे अद्भुत कार्यक्रम नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे कमेंट्स जो मुझे अभी चलते चलते दिख रहे हैं। और डॉक्टर आशु गोयल जी, आपसे बहुत सारे प्रश्न अभी जो अनआंसर्ड है वो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आमंत्रण दूंगा। आप बेशक 10 मिनट के लिए हमारे कार्यक्रम में आए, आप जरूर आएगा, आपका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े, आपने हमसे आज डिटेल में बात की। और मीनाक्षी दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। और भास्कर जी, जो आपकी ये, जो आपका ये प्रयास है, इस प्रयास को साधुवाद। और आने वाले दिनों में हम फिर इसी मंच पे अगले शुक्रवार को 11:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।
4: जय श्री कृष्ण
3: भैया, जय श्री कृष्ण।
1: अभी लीव कर सकते
4: हैं? हाँ, आज थोड़ा सा बीच-बीच में इको
0: रहा। देखा लोग कितने सुन रहे थे, 67 सर ने 60 65।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: दोईचो बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हंद।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है आंखों ही आंखों में।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: दालाज़ महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: विदस्ता की लहरों सी रवानी है जिसमें, मोहब्बत की हर वो कहानी है इसमें। ये सिर्फ सुरों का सफर नहीं है दोस्तों, दिलों को दिलों से मिलाने की ठानी है इसमें, दिलों को दिलों से मिलाने की ठानी है इसमें। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का FM 90.0 MHz पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना चाहिता स्टेशन रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त और आपका हम सफर भारत सोपोली,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और इस सुरेले सफर की हमराही कृष्णा। हमारे तमाम सुनने वालों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। भारत जी, आज मौसम में एक अलग ही खनक है और हमारे श्रोताओं की धड़कने भी कुछ गुनगुना रही है।
0: बिल्कुल कृष्णा, और जब दिल गुनगुनाने लगे तो समझो वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम का। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना शो आपकी फरमाइश।
1: अरे वाह, जिसका हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे भारत जी, कुछ लोग सोचते होंगे कि रेडियो का काम सिर्फ गाने बजाना और फरमाइशें पूरी करना है, क्यों ना आज उन्हें असली बात बताई जाए।
0: बिल्कुल सही कहा कृष्णा, रेडियो विदस्ता सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है, यह एक जज्बात है। हमारी दुनों में छुपा है हर किसी का अफसाना, हमारा काम नहीं सिर्फ एक गाना बजाना। विदस्ता की कसम, हम तो वो राही हैं जिनका मकसद है दिलों को दिलों से जोड़ जाना।
1: क्या बात है, लाजवाब। हमारा यह मंच, ये सुरमई लहरें सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये माध्यम है आपकी खुशियों को, आपकी यादों को और आपके अपनों को एक दूसरे के करीब लाने का। हम यहाँ सिर्फ गाने नहीं बजाते, हम दिलों को दिलों से जोड़ते हैं।
0: तो फिर देर किस बात की, आपके संदेश और आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट हमारे सामने है। विदस्ता के इस पावन प्रवाह के साथ सुरों की महफिल सज चुकी है,
1: तो थाम लीजिए अपने दिलों की धड़कन और हो जाइए तैयार। आइए शुरू करते हैं आपकी फरमाइश का यह खूबसूरत सिलसिला इस पहले नगमे के साथ।

उम्मीद है आपको ये पहला फरमाइशी गीत पसंद आया होगा, जिसकी फरमाइश हमें आई थी गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता थे सैयद मसरूर, इनके साथ इसी गाने को सुनने वाले अन्य श्रोता थे शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। ये सभी सुनना चाहते थे फिल्म आए दिन बहार का गीत। गीत के बोल थे मेरा महबूब है बेमिसाल। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से सवारा था आशा भोसले जी ने। इसी के साथ लेती हूँ मैं अगली फरमाइश, जो आई है हमारे पास गांव मंदेवर यमुना नगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेर, अंगराज और विकास पंजेता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कर्तव्य का गीत। गीत के बोल हैं छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला छावनी से। भेजे वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनका परिवार। सुनना चाहते हैं फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से गीत। गीत के बोल है बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। इस गीत को आवाज दिया मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं कैप्टन अमरजीत शर्मा का ये पसंदीदा नगमा।

0: पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला छावनी से। भेजने वाली श्रोता है उषा कौशल जी और उनका परिवार। ये सभी लोग सुनना चाहते हैं फिल्म हकीकत का गीत। गीत के बोल हैं, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी, मन्ना डे और अन्य कलाकारों ने। तो पेश है उनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।
1: हो के मजबूर मुझे।

आयुष हो तो अब आपको लेके चलते हैं मुंबई और अगली फरमाइश हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता है अमित, रेखा, कृतिका, डॉली और नीलू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म शारदा से गीत। गीत के बोल है आपका खत मिला आपका शुक्रिया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आप अभी मुंबई में ही ठहरिए, क्योंकि हमारी अगली फरमाइश भी मुंबई से ही है। भेजने वाली श्रोता हैं रीता, उनके साथ अन्य श्रोता हैं लुक्मी, हीरा, परवीन, रेनू, गीता, किरण, ललित, राधा और मोहन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अपने रंग हजार का गीत। गीत के बोल हैं, ना गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा मन साजन तेरी अखियों में। आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, लेते हैं अगली फरमाइश। अभी हम आपको महाराष्ट्र में ही घुमा के आपको लेके जाते हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र। वहां से हमारे पास आई है अगली फरमाइश। भेजने वाले श्रोता है पीएस नहावकर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म दुनिया झुकती है से गीत, गीत के बोल है फूलों से दोस्ती है। गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। और पीएस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान ताइडे और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है हासी मारा वेस्ट बंगाल से। देने वाले श्रोता है ममता राव, श्रीनिवास राव और आद्य राव। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म शागिर्द का गीत। गीत के बोल हैं कान्हा आन पड़ी में तेरे द्वार, जिसे अपने मधुर आवाज से सवारा है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अब हम आपको वापस अपनी कर्मस्थली अंबाला छावनी में ले आते हैं। अंबाला छावनी से हमारे पास अगली फरमाइश आई है, चंद्रूप नगर बबियाल अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मा का गीत। गीत के बोल है राज की बात कह दूं तो। गीत को आवाज दी है आशा भोंसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए, प्रस्तुत है मदन गोपाल सैनी जी का ये पसंदीदा नगमा।

0: रहने दो।
1: देश अगली फरमाइश जो फिर से हमारे पास आई है अम्बाला छावनी से, भेजने वाले श्रोता है अनिल, ये सुनना चाहते हैं फिल्म फांसी का गीत। गीत के बोल हैं, जब आती होगी याद मेरी। इस गीत को अपनी आवाज दी है सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफी जी ने, तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस फरमाइश को पहली बार सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप अपना कोई फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं तो आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। आपको लिखना होगा किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत के बोल, हरियाणवी या पंजाबी गीत के बोल, और साथ में आपको लिखना होगा अपना नाम, आप कहां से बोल रहे हैं और आपके साथ अपने परिवार जन या आपके दोस्त अगर ये गीत सुनना चाहते हैं उनके नाम भी आपको स्पष्ट लिखने पड़ेंगे। आप हमारा नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर से, और भेजने वाले श्रोता है विनय मोहन खारवा। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म देश प्रेमी से गीत। गीत के बोल है मेरे देश प्रेमियों, और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणधीर बांगर, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गुलामी का गीत। गीत के बोल हैं जिहाले मिस्किन। इसे अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर जी और शबीर कुमार ने। तो पेश है इन सभी की पसंद का ये मनमोहक सा गीत।

0: तो श्रोताओं, ये था आज की फरमाइशी गीतों का सफर। लेते हैं हम आज के कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म भरोसा से गीत। गीत के बोल है, आज की मुलाकात बस इतनी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहिंदर कपूर ने। निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। आइए श्रोताओं, हम आपको इसी गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और हम भी आपको कहते हैं कि आज की मुलाकात बस इतनी ही, और हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आप सभी लीजिए इस गीत का आनंद और मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जी हाँ, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और एक बार आज का जो शो था, भगवद गीता जीवन का आधार, और हमने सोचा था कि कुछ समय के लिए करेंगे, पर एक घंटा कब हुआ पता नहीं चला। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप इस समय हमें सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर लाइव भी, और साथ में हमारे फेसबुक पेज पर, आपके लिए शुक्रिया करने के लिए आया हूं। आपका साथ ऐसा ही रहे, और ये जो गीता उपदेश पर ये कार्यक्रम है, और ये जारी रहेगा। हर शुक्रवार को 11:30 बजे सुबह लाइव होगा। हमारे साथ अलग अलग मेहमान होंगे, और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आप से हम वार्तालाप करें। आज थोड़ी सी कुछ तकनीकी दिक्कत रही, आपके कॉल्स आए और हम आपके कॉल्स को पिक नहीं कर पाए, और उस हिसाब से हम अगले शुक्रवार के लिए जो शो करेंगे उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करेंगे, ताकि आपके कॉल्स भी हम लें और हम आगे आने वाले दिनों में आपसे बातचीत भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत थी, आज का जो शो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि एक नया शो नई तरीके से करना था। नए मेहमान थे, उनसे जब हमने बात की तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उनकी ओर से भी, और आप सभी श्रोताओं की ओर से, खास करके जो हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं सुनते हैं उनके लिए, और साथ में रेडियो की श्रोताओं ने भी हमें अपने कमेंट्स भेजे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप ऐसे ही रेडियो वितस्ता का साथ देते रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप रेडियो वितस्ता का साथ ऐसे ही देंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए वो कार्यक्रम ले आएं, वो लाइव शोज ले आएं, जो रखते हो आपसे सरोकार। रेडियो वितस्ता की पहले भी यही कोशिश रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे इस कार्यक्रम को अपना प्यार देंगे, अपना स्नेह देंगे। बस आज के लिए इतना ही, और आज मैं आपके लिए ये धन्यवाद करने के लिए आया था, और कोशिश थी कि आप सभी का एक बार अभिनंदन करूं, और उम्मीद करूं कि अगले शुक्रवार को 11:30 बजे आप फिर मिलेंगे हमारे साथ कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में, और कार्यक्रम का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार। हम कोशिश करेंगे कि भगवद गीता हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करती है, किस तरीके से वो हमारे धर्म के साथ, हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। कोशिश करेंगे अलग अलग जगह से हम अपने मेहमानों को जोड़ेंगे, जिन्होंने पूरा जीवन इसके लिए लगाया है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और आप सभी श्रोताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि आप learngeeta.com पर रजिस्टर करें, और जुड़िए, और सुनिए, और सीखिए, और सुनाइए गीता जी का उपदेश। तो आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं भारत सोपोरी और आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज आप सभी जानते हैं आज पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण हम सबके लिए कितना जरूरी है, कितना महत्व है। अगर हम आज पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो अगली पीढ़ी को शायद हम कुछ दे नहीं पाएंगे। साथ में जो हमारा जीवन है वो हमारे श्वास जब होंगे तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। आप सभी जानते हैं कि जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चाहे सांस की हो चाहे और दिक्कतें होती हैं। एक सर्वेक्षण में देखा गया है कि जो दिल्ली के लोग हैं जब उनका लंग्स उनके देखे गए तो उनके लंग्स बाकी देश के कंपेरिजन में काले देखे गए। स्वस्थ होने के बावजूद भी वो पोल्यूशन को सांसों के जरिए अंदर ले जाते हैं तो अपनी जिंदगी का, अपनी जान की नुकसान करते हैं। तो हमारा फर्ज सभी का यही है कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। न कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, मेरे हिसाब से हमें हर दिन पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। और आज इस उपलक्ष्य में अभी 4 बजे से 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम राम राम हरियाणा में भी यही बातचीत होगी। और आज हमारे एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं जो अंबाला की शान है, जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह। ये रोटरी के साथ जुड़े हैं, समाज सेवी है, मोटिवेशनल स्पीकर है और पर्यावरण के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे आज के इस स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो वेरी मच। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये प्रोग्राम हम पिछले 1 साल से प्रपोज कर रहे थे, आज होगा कल होगा, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये प्रोग्राम आज हो रहा है। और आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को जीवित रखने के लिए एक वर्ल्ड वाइड एक दिन नॉमिनेट किया गया वो मनाने के लिए। विश्व भर में पिछले 30 सालों में जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से तापमान बढ़ा है, पॉल्यूशन बढ़ा है और हर तरह की बीमारियां बढ़ी हैं, उस बारे में एक चर्चा का दिन, और बाकी दिन हम इसको फॉलो अप पे रखेंगे। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो जितने भी डेवलप देश हैं, जितने डेवलपिंग देश हैं और जितने अंडर डेवलप देश हैं, इन 3 कैटेगरी के देशों में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें तो आप लिविंग स्टैंडर्ड का तो डिफरेंस देखेंगे, क्लाइमेट का भी आप डिफरेंस देखेंगे। अगर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, मोटा मोटी अगर हम देखें तो इस लेवल पे बात कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट हमें सब कुछ देता है। हम सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे आप ले लीजिए, चाहे मैं, मेरे सुनने वाला हर इंसान एक सर्विस प्रोवाइडर है। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बेसिक प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ पेड़ है। पेड़ के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन की जो क्षमता है जीवन देने की वो हम सब जानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं, समुद्र के नीचे कुछ पेड़ पौधे हैं वो देते हैं। और आपको जानकारी है पेड़ का जीवन 5 तत्वों का है। हम जब मर जाते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, जलाने के लिए या दफनाने के लिए आपको लकड़ी की जरूरत
0: जी,
1: उसमें भी आपका एक पेड़ लग जाता है
0: जी।
1: सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं,
0: वो भी हमें पेड़ से ही मिलता है।
1: पेड़ से ही मिलता है, और कोई हमें नहीं दे सकता। पेड़ चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो, प्लैंक्टन्स हो, या जो हम डाइकोटिलेडन्स हो, मोनोकोटिलेडन्स हो, बिगर प्लांट्स हो, स्मॉल प्लांट्स हो, बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस कर सके, जो ग्रीन हो वो। तीसरा काम, जो भी हम फ्रूट खाते हैं वो भी पेड़ से आएगा। आप कहते हैं मैं तो नॉन वेज हूं, नॉन वेज भी तो किसी को खा के अपना मांस बढ़ाएगा
0: जी जी।
1: एक गोट को, एक बकरी को अपना मांस बढ़ाने के लिए क्या खाना पड़ेगा? वो दूसरी बकरी को तो नहीं खा सकती, वो पेड़ पौधे खाती है। इसी तरह से दुनिया भर के तापमान को मेंटेन करने के लिए वाष्पीकरण के माध्यम से जो पेड़ अपना छोड़ते हैं वो भी बहुत जरूरी है। साथ साथ में जमीन को पकड़े रखने के लिए, पानी के तत्व को पकड़े रखने के लिए जड़ों के माध्यम से, उसके लिए पेड़ जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, हम जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है 4 से 5 बजे तक, राम राम हरियाणा, और ये सारे हरियाणा के श्रोताओं तक आपकी आवाज को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इस पावन दिवस पर हम आपसे बात तो डिटेल में करेंगे उस कार्यक्रम में। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं
1: जी,
0: एक डॉक्टर का और पर्यावरण का जो सारथी है उन दोनों में क्या समन्वयता है और क्या अंतर है?
1: देखिए, डॉक्टरी में 2 पैटर्न्स है, एक प्रिवेंटिव पैटर्न्स है और क्यूरेटिव है, यानी कि प्रिवेंशन का बीमार ही कम हो। अगर आप देखें जो आदमी परिवार में रहता है, जो ऐसे माहौल में रहता है जहां पेड़ पौधे बहुत हैं, वो बीमार कम होता है। कंक्रीट जंगल में, जो कंक्रीट जंगल में जो बीमारियां ज्यादा होती हैं, एक गांव का आदमी, एक अलड़ सा आदमी जिसे घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, आपने देखा होगा उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा मिलेगी, ठीक मिलेगी। और ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसकी ठीक है, जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड का एक ही पैमाना था कि अगर आपने किसी की ऑक्सीजन सेचुरेशन देखी और वो 95 से ऊपर है तो हम कहते थे घर जाओ आराम करो
0: जी।
1: अगर उसकी कम थी तो हम उसे एडमिट करते थे। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत जरूरी है और डॉक्टरी में प्रिवेंटिव पैटर्न पे पेड़ का होना जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं तो दवाई देके ठीक करूंगा तो बिजनेसमैन है, इज नॉट अ डॉक्टर।
0: जी
1: मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप किसी आदमी को दवाई देके ठीक कर रहे हैं तो आप डॉक्टर नहीं, एक बिजनेसमैन है। आप इन्वेस्टमेंट की और उसको वापस लेना चाहते हैं। डॉक्टर का मतलब ये है कि आप किसी बीमार आदमी को ठीक करें लेकिन उससे पहले औरों को बीमार ही ना होने दें।
0: जी जी।
1: जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप अपने घर में, बेडरूम में, अपने किचन में, अपने बाथरूम में स्नेक प्लांट लगाइए।
0: जी।
1: स्नेक प्लांट, अगर 10 kg स्नेक प्लांट आपने अपने बाथरूम में या किचन में या बेडरूम में रख लिया तो एक आदमी ने जो गंदगी अपने सांस के माध्यम कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरे माध्यमों से जो गैस निकल रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके बीमार होने के चांसेस कम है।
0: चलिए अभी हमारे पास कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, अभी कुछ मिनट है और हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हरियाणा के जितने भी श्रोता हमारे उस वो भी इस कार्यक्रम में
1: जी जी
0: फोन करके जुड़ते हैं। तो देखते हैं, अभी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मैं सभी अंबाला के श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम राम राम हरियाणा आप सोमवार से शुक्रवार तक सुनते हैं 4 बजे से 5 बजे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी होता है, तो आप बनिए इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और उम्मीद करते हैं कि आप हमें कॉल करेंगे। हमारा इस शो का जो नंबर है वो 88 16 904 904 है।
1: जिन दोस्तों को मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों को चीयर्स, हम कावा पी रहे हैं, बहुत स्वाद कावा है, इट्स अ मार्वेलस वन।
0: अभी इनको पता है कि जब मैं वॉइस ऑन करूंगा इधर से, अभी इनको हमारी वॉइस नहीं जा रही है। हमारी वॉइस आ रही है प्रीतम जी?
1: मैंने
0: बंद कर डिप करके रखा हुआ है, तो अभी राम राम हरियाणा का वो चलेगा तो उसके बाद हम उसको करेंगे।

0: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला से हम इस समय लाइव है और साथ में मैं पटल पर हमारे साथ अपना रेडियो चरखी दादरी से प्रीतम जी का स्वागत करता हूं, गुरविंदर जी का भी स्वागत करता हूं। और अभी शो शुरू नहीं हुआ, कॉल आने शुरू हो गए। पहला कॉल मुझको लगता है कि हमें लेना पड़ेगा और कॉल अगर कनेक्ट हो रहा है तो कॉलर अगर जुड़े हैं हमारे साथ तो हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, चरखी दादरी जिला से।
0: जी जी,
1: टुड्डी वाला बंद करने।
0: क्या शुभ नाम आपका?
1: जी, मेरा महेश कुमार नाम है जी।
0: जी, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप?
1: तो जी एक समस्या है जी हमारे गांव में फिरनी और रास्तों की जी।
0: जी
1: जी
0: बताइए, विस्तार में बताइए।
1: ये हमारे गांव डूडीवाला नंदगढ़ की जो फिरनी है जी वो दबी हुई है
0: जी। जी
1: वो सिर्फ तो कहीं तो 3 फुट छोड़ रखी है, कहीं 4 फुट।
0: प्रीतम जी जरा आप नोट करिए क्या बता रहे हैं आप। प्रीतम जी
2: सभी को नमस्कार। मैं कल भी आपके गांव से एक यही शिकायत आई थी, उसके समाधान के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा।
1: हाँ जी, करवाओ जी, बड़े परेशान है जी और बारिश के टाइम में तो निकला ही नहीं जाता जी।
2: कल भी आपके गांव से यही समस्या आई थी तो हम उसके लगे हुए हैं। कल या परसों आपके जो BDPO है, आपका बारडा खंड है ना?
1: हाँ बारडा, हाँ जी ब्लॉक बारडा है जी हमारा,
2: ब्लॉक बारडा है। तो बारडा के हम आपके BDPO को जोड़ेंगे तो उनसे सारी बातें करेंगे उसके बारे में।
3: प्रीतम जी गांव का नाम कौन सा इनका?
2: नंदकरण बुड्डी वाला सर।
3: है जी,
2: नंदकरण बुड्डी वाला।
3: नंदकरण,
2: हाँ सर
3: बुड्डी वाला। लो वीडियो साहब से बात करेंगे, फिर परसों को जोड़ लेंगे हम।
2: सोमवार को जोड़ेंगे सर।
3: हाँ जी, हाँ जी,
1: चलो ठीक है। कई बार तो हमने शिकायत कर ली जी, कोई समाधान नहीं निकल रहा जी।
0: कोई बात नहीं,
3: सोमवार को खुद भी जुड़ूंगा प्रोग्राम में।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया, हमने ये नोट कर दिया है। और जो आपके BDPO है उनसे बात करके, क्योंकि ये शो सोमवार से शुक्रवार तक होता है, अगला शो अब सोमवार को होगा, हम कोशिश करेंगे कि उनको टेलीफोन के माध्यम से जोड़ेंगे और आपके लिए जो भी समाधान होगा वो हम आपको इसी शो में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद। सौरभ जी अगर आप मेरी आवाज़ सुनते हैं तो ज़रा आप इसका फ्रेम सही करिए, क्योंकि इसका जो सेटअप है सॉफ्टवेयर का उसको सही करिए ताकि हम सब सही दिशा में दिख जाएं। और सभी श्रोताओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रीतम जी और गुरविंदर जी के साथ साथ। उम्मीद करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमसे अभी कुछ क्षणों में जुड़ेंगे। और ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लाइव सुना जाता है। और आप सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे पास एक श्रोता का कॉल आया था, आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8816904904। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 8816904904। आज है 5 जून 2026 शुक्रवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी, 2083 विक्रम संवत। और आज हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक कॉल और आ रहा है, जोड़िए कॉलर को। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी जब तक कॉलर जुड़ जाते हैं तब तक मैं और भी जानकारी दूंगा। आज के हमारे इस शो में हमारे अंबाला से जुड़े हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, जो पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और साथ में हमारे अंबाला में इन्हें ग्रीन मैन ऑफ अंबाला कहा जाता है। और मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज आज जो इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हरियाणा में जाएगी और जिन श्रोताओं तक हमारे पास ये रेडियो के माध्यम से आवाज पहुंचती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आवाज पहुंचती है, तो मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज सारे हरियाणा तक पहुंचे, इवन पूरे विश्व तक पहुंचे, ताकि हम पर्यावरण के बारे में जान सके। जब तक हमारे और भी मेहमान जुड़ते हैं, डॉक्टर जोगिंदर सिंह सर, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपना परिचय के साथ शुरू करें और आप ये बताएं कि जो पर्यावरण दिवस है ये केवल 5 जून को ही मनाया जाता है, ये हर दिन क्यों नहीं हो सकता? जोगिंदर सिंह जी
4: नमस्कार। बिना किसी अतिशोक्ति के, माँ बाप के कठिन परिश्रमों ने मुझे डॉक्टर बनाया, मेरा कोई भी उसमें लेना देना नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद ये महसूस हुआ कि जीवन में डॉक्टरी के सिवा भी बहुत कुछ है, जैसे पोइट्री है, पर्यावरण है। 25 साल हो गए मुझे डॉक्टरी करते हुए और 25 सालों में ये महसूस हुआ है कि जिस पैरामीटर पे हम डॉक्टरी करते हैं उसे थोड़ा सा हमें हटके भी बात करनी चाहिए। किसी बीमार को दवा दे देना एक अच्छी बात है, देनी चाहिए, एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन कोई बंदा बीमार ना हो, कोई इंसान बीमार ना हो,
0: सर कहीं पर रेडियो ऑन है, प्लीज इसको ऑफ करिए। जी, रविंदर सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप इस समय सफर में कहीं जा रहे हैं और आज हमारे साथ है डॉक्टर जोगिंदर सिंह, अंबाला के ग्रीन मैन जिनको कहा जाता है। तो आपका स्वागत, अभिनंदन, आप क्या कहना चाहेंगे?
5: मैं सफर में हूं, आपने सही कहा, मैंने आपको पूर्व सूचना दी थी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था बिलासपुर, जिसे आजकल ब्यासपुर के नाम से जाना जाता है, यमुनानगर जिले का स्थान है, वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं पहुंचा था और वहां से भी मुख्यमंत्री जी ने आज पर्यावरण बचाने, पर्यावरण की रक्षा के लिए और हर घर हर नागरिक को ये कहा कि भाई आप जो है एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दें। मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने मेहमान का स्वागत करते हुए, जिन्हें आपने ग्रीन मैन ऑफ अंबाला कहा, और सभी जो हमारे प्रति हैं उन सबको भी पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, भारत जी जितनी देर मैं सफर में जुड़ा रह सकूंगा आपसे अपनी कहूंगा, आपकी और आज के मेहमान की सुनूंगा, आप बातचीत को जारी रखें। आप डॉक्टर साहब से जो चर्चा छेड़े हुए हैं उसी में मैं भी कोशिश करूंगा कि बीच बीच में शामिल हूं और मैं समझ रहा हूं कि मैं सफर में हूं, इस कारण से मेरा ऑडियो कार्यक्रम की गुणवत्ता तो प्रभावित नहीं कर रहा, कुप्रभावित। भारत जी,
0: नहीं नहीं बहुत अच्छी आवाज, मेरी
5: ऑडियो से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा, अगर हो तो मुझे बताइएगा।
0: जी आपकी आवाज आ रही है सर, आप आवाज के
5: जी
0: नहीं नहीं आप आवाज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े और जुड़े रहिए और हम कोशिश करेंगे कि जब तक आप कहीं स्थिर जगह पर पहुंचते हैं, नहीं तो हम कार्यक्रम को ऐसे आगे जो है उसको हम चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और आपके साथ जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरे विश्व के साथ बात करते हैं और आज वैसे ही विश्व पर्यावरण दिवस है। और मैं डॉक्टर साहब से प्रश्न किया था कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये कहिए कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आज ही के दिन हम क्यों मनाते हैं? हम पूरे विश्व में पूरे साल में हर दिन इसकी तैयारी क्यों नहीं करते?
4: देखिए, मदर्स डे मनाना और पर्यावरण दिवस एक दिन मनाना, ये मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। मदर्स डे हर दिन होता है और एनवायरनमेंट डे हर दिन होना चाहिए, पर्यावरण दिवस हर दिन होना चाहिए, क्योंकि साल में एक दिन अगर आप पर्यावरण के लिए सोच लेंगे तो आप पर्यावरण का सपोर्ट नहीं कर सकते।
0: जी,
4: पर्यावरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने 4 पेड़ लगा लिए वो पर्यावरण है, उनको 364 दिन आपने सर्वाइव करवाना है। आपने 4 पेड़ लगाने नहीं है, 4 पेड़ को आगे बढ़ाना है। जैसे मेरी अभी बात हो रही थी सर से, आदमी को पेड़ की जरूरत हर विषय पे पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है घर पे तो कुछ पेड़ पौधों के पत्ते रिलीजियस कंपोनेंट से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पत्ते घर के सामने टांगे जाते हैं। जब आदमी मरता है तो भी उसे लकड़ी की जरूरत पड़ती है, और जीवन के बीच में तो उसको पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती पड़ती है। आप किसी भी माध्यम से सुन लीजिए, किसी भी माध्यम से देख लीजिए, जीवन में प्राइम प्रोडक्शन जो है वो पेड़ ही कर सकता है। मतलब प्रोड्यूसर प्लांट्स ही है, हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अगर कोई नॉन वेज भी खा रहा है तो वो नॉन वेज भी बेसिकली आया तो वेजिटेबल से ही है
0: जी।
4: एक बकरी ने पेड़ खाया, पत्ते खाए और वो बड़ी हुई और फिर आपने उसे खा लिया, तो बेसिकली प्रोड्यूसर इज अ प्लांट। तो पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन कतई ही संभव नहीं है दुनिया के किसी भी हिस्से में। आप आर्टिफिशियली एयर बना सकते हैं ऐसा हमारा मानना है, लेकिन उसकी क्वालिटी के लिए आप किस हद तक आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, किस लेवल की आपको थोड़ लेनी पड़ सकती है, ये बहुत। आज के प्यूरीफायर चल रहे हैं, जिन लोगों ने अपने घर में प्यूरीफायर लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं, 10x10 के कमरे को कूल करने के लिए उस एसी को, उस प्यूरीफायर को डबल द अमाउंट ऑफ द स्पेस गर्म करना पड़ता है
0: जी।
4: सो इट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट कि हमें पेड़ पौधों के शरण में जाना पड़ेगा। और एक धार्मिक मामले से जोड़ते हुए, हमारे धर्म के नहीं, हर धर्म में जब भी किसी को ज्ञान मिला है वो पेड़ के नीचे मिला है। आप कहीं चले जाए, बौद्ध पेड़ के नीचे बैठे, गुरु नानक पेड़ के नीचे बैठे, जीशु क्रिस्ट भी पेड़ के नीचे ही,
0: तो भगवान कृष्ण ने भी पेड़ के नीचे ही उपदेश दिया जी, गीता का।
4: जितने भी अब तक का सिविलाइजेशन में जो भी महान हुआ है वो पेड़ के पास ही हुआ है, क्योंकि जीवन शक्ति पेड़ के सिवा किसी में नहीं है। और पेड़ का स्वस्थ होना हमारे स्वस्थ से डायरेक्ट लिंक्ड है। शायद हम पेड़ के बिना एक पल भी ना जी पाए जी।
0: जी प्रीतम जी, आप सुन रहे हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी को, और वीरेंद्र जी भी सुन रहे हैं। वीरेंद्र सर, कोई प्रश्न, कोई बात आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी से?

0: अनम्यूट कीजिए वीरेंद्र सर।
1: हेलो।
2: जी जी सर,
1: मेरी
0: हाँ
1: आवाज
0: सर,
1: पहुंची क्या?
2: जी योर
1: मैं
2: ऑर्डर।
1: ये कह
0: पहुंच
1: रहा
0: गई सर।
1: था कि
0: अरे वाह
1: हाँ डॉक्टर साहब,
2: जी सर,
1: आप चिकित्सा के पेशे से आपका संबंध है और आप आपकी जो ख्याति हुई, आपकी जो पहचान बनी वो पर्यावरण रक्षण को लेकर बनी।
2: जी जी
1: पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए, ये पहली बार विचार किस समय आया? और हर बार हर विचार के भी पैदा होने का, आपने बुद्ध का जिक्र किया, बोधिसत्व का जिक्र किया, बोधि वृक्ष के नीचे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बुद्ध भी राजा थे। एक मुर्दे को जाते हुए, लाश को ले जाते हुए लोगों को देखा, वहां से प्रश्न पैदा हुए, प्रश्न पैदा हुए तो विराग पैदा हुआ और वो छोड़ करके सोती पत्नी को फिर वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े।
2: जी
1: आपके जीवन में भी कुछ ऐसा रहा क्या? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्रम, जीवन क्रम की पुस्तक का कोई ऐसा पन्ना है क्या जिसने इस विषय पर काम करने, काम शुरू करने के लिए आपको प्रेरित किया हो?
2: देखिए, वैसे तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मैं क्लास 4th में था तो मेरी मम्मी ने, हम कई भाई हैं उस टाइम में, कई भाई हुआ करते टीवी ना होने की वजह से, तो मेरी मम्मी ने हम सभी भाइयों से एक एक पेड़ लगवाया। आई वॉज इन क्लास 4th, मेरा छोटा भाई 3rd में था और एक छोटा भाई, कई भाई होने की वजह, तो मैं अब सबकी डिटेल नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने एक एक पेड़ लगवाया। हमने पूछा ये पेड़ क्यों लगाए जा रहे हैं, बोलते हैं वो अमरूद का पेड़ था। आज भी मुझे ध्यान है कि भाई जो अमरूद आप खा रहे हैं वो आपने नहीं लगाया, कुछ तो ऐसा लगाया कि कोई आने वाला खास के। तो वो दिन लंबा समय हो गया, आई थिंक आई वॉज 4th स्टैंडर्ड में, ठीक से याद कर पा रहा हूँ उस चीज को। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा पेड़ लगाने का शौक हुआ और इस क्रम में हम अब तक, मैं जहां भी रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी फौज में थे, हम अलग अलग स्टेशन में गए और अंबाला में मुझे 13 साल हो गए। तो मैंने ये अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि पेड़ लगाने के लिए मुझे अग्रसर होना ही होगा। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने रिसोर्सेस का 2-4-5% प्लांटेशन पे लगाए ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाए।
3: प्रीतम
1: मुझे
3: जी
1: यहाँ पे एक टिप्पणी
3: आप
1: करने का मन हो रहा है। भारत जी, भारत
3: जी
1: जी, मेरा मेरा डॉक्टर साहब की बात पर एक टिप्पणी करने का मेरा मन हो रहा है
3: जी
1: और वो
3: बोलिए।
1: ये है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी माता जी ने इन्हें प्रेरित किया, या माता जी ने जब ये छोटे थे भाइयों के साथ सबको पेड़ लगाने के लिए कहा।
3: जी
1: एक सुंदर संयोग मुझे दिखाई दे रहा है। पेड़, पर्यावरण, इन सब का संबंध मुझे लगता है माँ से ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा है, पिता से ज्यादा है। हालांकि
3: जी
1: पालक पिता भी है, पिता का अपना स्थान है जीवन में, परंतु हमारे ऋषि मुनि
3: डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि
1: भारत जी धरती से हमारा नाता माँ बेटे का है
2: जी बिल्कुल
1: और ये जो नाता है हमें पर्यावरण से सीधे जोड़ता है। वेद कहता है, वेद की ऋचाएं कहती हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः,
2: बिल्कुल
1: ये
2: बिल्कुल
1: धरती, ये भूमि माता है, मैं इसका पुत्र हूं। तो
2: जी
1: अगर आज के संदर्भों में भी हम थोड़ा सा अपनी सोच को और दुरुस्त करें, वैदिक चिंतन की तरफ बढ़ें और ये सच्चे अर्थों में मानना शुरू कर दें व्यवहार में कि ये धरती मेरी माँ है, अपनी माँ के परिवेश, पर्यावरण को सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है, तो फिर हम हर दिन पेड़ लगाएंगे, लगे हुए पेड़ों को बचाएंगे। तो
2: जी जी
1: कभी कभी मेरे मन में यही बात आती है कि भाई ये जो प्राचीन नाता है ना हमारा धरती के साथ, धरती माता हम कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहते हैं, इस रास्ते से अगर गुजरेगा देश और दुनिया नए सिरे से तो पर्यावरण का संरक्षण का काम वो सरल हो जाएगा। और शायद उसी भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान शुरू कराया कि माँ के साथ लगाव गहरा होता है, एक पेड़ माँ के नाम सब लगाएं, अपनी माँ के नाम सब लगाएं, तो माँ के नाम लगाए हुए पेड़ का व्यक्ति पालन भी करेगा, उसको संभालेगा भी। ये
3: जी
1: मेरी माँ के नाम का पेड़ है, उसको
3: जी
1: बढ़ता हुआ फलता हुआ देख के व्यक्ति को संतोष भी मिलेगा, आनंद भी आएगा और व्यक्ति की जिम्मेदारी से वो करेगा। तो मुझे सब जगह माँ दिखाई दे रही है, मोदी जी के आंदोलन में माँ है, डॉक्टर साहब की प्रेरणा माँ है और वेद में भी हमारा पति से जो रिश्ता है वो माँ माँ वाला रिश्ता है, इसी रिश्ते को मुझे लगता है और प्रगाढ़ करने की गुंजाइश है। प्रीतम जी अपना सवाल पूछ सकते हैं।
0: मैं जोगिंदर जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कार्यक्रम में पुनः। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि आजकल ऐसे वृक्ष बताइए दो चार जिससे पर्यावरण को प्रदूषण होने से कम पर्यावरण प्रदूषण बचाया ज्यादा बचाया जाए हो सके, जैसे बड़ हो गया, नीम हो गया, हम त्रिवेणी लगाते हैं, और कोई भी पेड़ है कि जिससे लगाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा?
2: सर ऐसा है कि पेड़
1: इसको सरल करता हूं मैं प्रीतम जी के सवाल को थोड़ा सरल कर दो, प्रीतम जी मैं मदद करूं
2: जी।
1: मैं ये सोचता हूं प्रीतम जी जानना चाहते हैं कि पेड़ तो लगाने ही है, मुझे आपको सबको लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों का चयन करते समय कौन कौन से पौधे ज्यादा लगाए जाने चाहिए?
2: जी इसमें तीन तरह के पेड़ हम लगा सकते हैं। पहले तो अगर आपके पास ओपन स्पेस है, देखिए पेड़ों की अपनी गुणवत्ता कई चीजों पे है, पांच बेसिक चीजें हैं। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो बड़, पीपल और नीम से बचें, क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे। आप सबसे पहले कोशिश करें आम, जामुन लगाने की, अमरूद लगाने की, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो सोखेंगे, आपको फल भी देंगे। और आज के समय में ऐसे अमरूद आ गए हैं जो साल में दो बार फल देते हैं, ऐसी जामुन आ गई हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के, आम ऐसे आ गए साल में तीन तीन बार भी आम देते हैं। तो जहां तक बात है पेड़ लगाने की, अगर आपके पास स्पेस कम है, आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में लगाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप बर्ड पीपल से बचें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, एक समय के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। फ्यूचर को आप देखते हुए फलदायक पेड़ लगाएं, क्योंकि फल का जो पेड़ है वो फल बनता किससे है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पॉल्यूटेंट्स और जो वाटर सप्लाई है, उन सबसे मिलके बनता है। तो जो पेड़ जितना अच्छा फल देगा उसने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें ज्यादा सोखी होंगी। तो आपके पास स्पेस है। अगर आप बेडरूम की बात करें स्पेसिफिकली, हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि हम कहाँ की बात करें। जैसे अगर आप बेडरूम में रखना चाहते हैं पेड़, तो एक स्नेक प्लांट नाम की चीज आती है। अगर आप अपने बेडरूम में 10 केजी के लगभग स्नेक प्लांट लगा लेते हैं, तो वो आपके एक आदमी के वेस्ट को, जो वो सांस के माध्यम से है या पू के माध्यम से जो गैस निकल रही है, उनको सोख लेता है और बहुत कामयाब हो सकता है। अगर आप अपने घर के किचन गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो तुलसी लगाई जा सकती है, मरवा लगाया जा सकता है, एलोवेरा लगाया जा सकता है। एलोवेरा जो है, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं, 100 ग्राम एलोवेरा अगर कोई आदमी रोज पिए या खाए 40 डेज तक, तो उसकी GIT की, पेट की, आंतों की, सभी तरह की बीमारियां ठीक हो सकती है। पेड़ लगाना जरूरी है, लेकिन पेड़ भी वो लगाएं जो आपको फल भी दे, छांव भी दे और अच्छी हवा भी दे।
1: आपने स्नेक प्लांट का जिक्र किया, ये जो स्नेक प्लांट है इसको हिंदी वाले क्या कहते हैं, हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? नर्सरी में जाए तो क्या कहकर के मांगे?
2: सर इसे वर्ल्ड वाइड स्नेक प्लांट ही कहा जाता है, और इसका हिंदी में, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं इसको स्नेक प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट का अपना वो,
1: इसको अगर कमरे में एक बार रख दिया तो बाहर धूप लगाने की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब? क्या ये इंडोर है?
2: ये बेसिकली इंडोर है सर, फिर भी आप दो चार महीने में अगर एक बार बाहर रख देते हैं तो इसकी पत्तियां धू जाती हैं। एक्चुअली जब आप किसी गमले में पेड़ लगाते घर के अंदर लगाते हैं, तो इसमें इसकी पत्तियां धोती नहीं है और स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी फ्रेश हवा लेने की और देने की आपकी संभावना कम हो जाती है। तो महीने दो महीने में बाहर रख दें, और खास करके बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में आप देखेंगे जब बरसात के पानी से कोई पेड़ धोता है तो उसकी चमक अलग होती है। तो आप इंडोर प्लांट्स हैं, एक ये है, एक स्पाइडर प्लांट है, एक एलोवेरा है, ये तीन पेड़ आप कमरे में रख सकते हैं, इनमें सबसे अच्छा स्पाइडर प्लांट है।
1: अच्छा, मैं यहाँ पे रुक के एक व्यक्तिगत प्रश्न करता हूँ।
2: जी जी,
1: जो स्नेक प्लांट आपने कहा लगाइए, हम तुरंत लगाएंगे साहब, अभी मैं नीलोखेड़ी पहुंचूंगा यमुनानगर से, और हो सकता है मेरे आंगन में लगा भी हो, मैं उसको स्नेक प्लांट के नाम से ना जानता हूँ।
2: जी जी,
1: तो जो स्नेक प्लांट है, और देखिये मेरे सामने मेरी सहयोगी है डॉक्टर नीलम, अभी गाड़ी में, और इन्होंने तुरंत जो है गूगल किया और जो गूगल जो एआई इसका ट्रांसलेशन कर रहा है, इसको नागपोधा ही कह रहे हैं और इसे हिंदी में ही कह रहे हैं कि नागपोधा भी कहा जाता है, अपनी लंबी नुकीली धारीदार पत्तियों के कारण जाना था। स्नेक प्लांट देख के मुझे पता चल गया कि मेरे आंगन में तो बहुत सारे रखे हैं। मैं जो सवाल करने वाला था कि आपके अपने बेडरूम में
2: जी
1: आपने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, जो आप हम मैं तो लगा लूंगा आपके कहने में, अभी स्नेक प्लांट जाते ही आंगन में से उठवा के कई सारे गमले जो है वो अपने बेडरूम में पहुंचा दूंगा।
2: ऐसा है,
1: आपने कौन कौन से लगा रखे हैं, मैं तो कहते ही अपने वाले बताइए।
2: देखिए मैंने स्नेक प्लांट लगा रखा है, यकीनन लगा रखा है।
1: कितने कितने पौधे
2: मेरे पास, जो स्नेक प्लांट का जो गमला है, बड़ा गमला है, एक फीट बाय एक फीट का, तो उसमें काफी है। तो इसके साथ साथ में मैंने एक पेड़ जो स्पाइडर प्लांट भी लगाया हुआ है, वो भी मेरे पास काफी फल बड़ा है। तो मैंने अपने यहाँ तक कि बाथरूम में भी एक स्पाइडर प्लांट लगा रखा है, और जो कम से कम 1.5 फीट ऊंचा हो चुका है। तो ये जरूरी है एक्चुअली, कहना मैं वो चीज कह
1: रहा हूँ,
2: स्पाइडर प्लांट भी इसका स्नेक प्लांट की ही फैमिली का एक है, जो थोड़ा सा इससे छोटा होता है।
1: क्योंकि मैं एक इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ही मैं एक रील देख रहा था, तो जैसे आप स्नेक प्लांट की रहे, तो वो जो सज्जन बता रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि आपको अपने वॉशरूम में स्नेक प्लांट लगाना चाहिए। आप स्पाइडर प्लांट भी कह रहे हैं, वो इसका भाई भाईबंदी में जी, है इनकी।
2: जी जी जी जी, स्पाइडर प्लांट और जो स्नेक प्लांट है ऑलमोस्ट सेम फैमिली है, अगर आप पत्तों को देखें
1: तो स्नेक
2: जी
1: जी। और तीसरा एक और बोला था आपने घर के लिए इंडोर,
2: एलोवेरा, एलोवेरा का पेड़ लगाया जा सकता है। ये तो एलोवेरा के बारे में कि पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई है।
0: एक कॉल आ रही है सर
2: जी।
1: हाँ एलोवेरा तो हाँ, भारत जी को कॉल सुनना चाहिए। भारत जी कॉलर को सुने
3: जी। सर मेरे पास आप लोगों की आवाज आ रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी विषय पर बात करें, और साथ में कुछ कमेंट्स भी आए। सर्जन सिंह लिखते हैं हार्दिक अभिनंदन, और विजय सिंह राम राम हरियाणा, और करमबीर सिंह राम राम हरियाणा, और साथ में मनमोहन गुप्ता मोनी वो कह रहे हैं छा गए आप। अब ये नहीं पता ये मुझे कह रहे हैं या वीरेंद्र सर को कह रहे हैं।
1: भारत जी, भारत जी रुकिएगा
3: जी सर,
1: डॉक्टर साहब भारत जी को रोकना एक बार
3: जी जी।
1: दरअसल भारत जी के हिस्से का हेडफोन, भारत जी के हिस्से का हेडफोन लगा हुआ है डॉक्टर साहब के कानों पे। मैं ही कह रहा था भारत जी कॉलर लाइन पर है, एक बार उनको सुनेंगे पहले। हेलो कौन बोल रहे हैं?
3: जी जी जी
4: सर नमस्कार, मैं विजेंद्र प्रजापति बोल रहा हूँ सर, खिदादरी हरियाणा से।
1: खिदादरी हरियाणा से विजेंद्र प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है आपके?
4: सर बहुत बढ़िया सर। सर 3 साल पहले मैंने 4 पेड़ के लगाए थे सर।
1: अच्छा,
4: और आप उनके फला शुरू हो गया सर।
1: क्या हुआ? वाह, वैसे अपने अपने हाथ के लगाए हुए पौधे पर, अपने हाथ के लगाए हुए पेड़ पर जब फल आता है ना भाई साहब, उसको खाने का और खिलाने का आनंद ही अलग है। उसकी तसल्ली न्यारी है, और ही डाल की तसल्ली है। वैसे डॉक्टर साहब
4: जैसे अपनी संतान बड़ी होती है ना, ऐसे खुशी होती है मेरे को।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कोई विशेष बात कहना चाहेंगे क्या आप हमारे सुनने वालों को?
4: सर मैं करने वाले हैं, कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए, और उनका आजीवन उनके देखभाल करें जैसे अपने संतान की करते हैं सर। जिस तरह संतान आगे चढ़के कमा के खिलाती थी, तरह वो पेड़ बड़े होंगे तो सर वो भी कुछ ना कुछ फायदा ही करेंगे।
1: बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब एक बात बता दीजिए, इन्होंने इन्होंने अमरूद लगाया और इनके अमरूद पे फल आने शुरू हो गए, और ये खा भी रहे हैं खिला भी रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमरूद में भी कोई ऐसी वैरायटी आ गई क्या जो साल भर में फल देने लगती हो?
2: जी एक थाई आ रहे हैं, थाई थाईलैंड से एक वैरायटी है, और एक हिसार सफेदा है। जो ये हिसार सफेदा है ये साल में 2 बार फल देता है और बहुत अच्छे फल देता है, और इसमें कीड़े लगने की संभावनाएं कम है। एक लाल रंग का और काले रंग का थाई गुआवा आ रहा है, ये साल में 3 बार भी फल दे देता है, डिपेंडिंग ऑन आप उसकी कैसे से नरिशमेंट करते हैं। तो गुआवा के बारे में मैं आपको छोटा सा परिचय देते चलूं, दुनिया में जितने फल हैं आंवले के बाद गुणों में गुआवा सबसे ज्यादा है। इसमें फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, कंप्लीट जो फूड की कैटेगरी में अगर डालें तो सबसे नजदीक जो पहुंचने वाला है वो गुआवा है। जो फाइबर कंटेंट, अब आंवले में जैसे बात है, एक आप आंवला खाएं, दो खाएं, आप आधा किलो आंवले नहीं खा सकते, लेकिन अमरूद आप आधा किलो खा सकते हैं एक दिन में, तो आंवले को कंप्लीट फूड कहा जा सकता है सबसे नियरेस्ट। अमरूद के बारे में एक चीज और भी है, अगर अमरूद आपके घर में अमरूद का पेड़ है, 4 पत्ते अमरूद के अगर आपने चाय की तरह पीने लग गए तो भी आपके पेट की कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। इसके लिए जैसे चाइना में तो एक नया सिस्टम ही चला हुआ है कि चाय पत्ती की जगह अमरूद के पत्तों को चाय के तरह इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे छोटे अमरूदों को, मतलब वो अभी पके नहीं है, उनको सुखाया जाता है, उनको क्रश किया जाता है और उसकी भी चाय पी जाती है।
3: जी सर, मेरा भी एक प्रश्न है, इजाजत दें तो मैं भी पूछूं एक प्रश्न डॉक्टर साहब से।
1: जी भाई जी,
3: डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने जो पर्यावरण की बात करी, आपने वो हिस्सा आपने बताया कि जो हमारे घर के अंदर है।
2: जी जी,
3: जो हमारा बाहर का जो जो लोगों का आना जाना है बाहर, बाहर किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा स्वस्थ माहौल और स्वस्थ पर्यावरण दे सकें।
2: जी देखिए, ये तो घर की बात हुई, चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, स्कूलों की, कॉलेजेस की बात करते हैं
3: जी,
2: अगर आप प्राइवेट बिल्डिंग्स की बात करते हैं या गवर्नमेंट सेटअप की बिल्डिंग की बात करते हैं या पार्क की बात करते हैं, इनमें आपको छायादार पेड़ लगाने चाहिए। छायादार पेड़ों में कई तरह के पेड़ हैं, जैसे मैं आपको उसे शेयर करना चाहूंगा, नीम। आज की डेट में कैंसर की ट्रीटमेंट तक में नीम का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप नीम के पेड़, मेरा मकसद यह है कि सिर्फ आप पेड़ ना लगाएं, पेड़ वो लगाएं जो आपको मल्टी फंक्शनिंग करके दे, हवा तो दे अच्छी, छांव भी दे, फल भी दे और एक लंबे समय तक दे। जैसे त्रिवेणी की बात हुई, जो ओपन एरिया हैं उसमें त्रिवेणी लगाने के अपने बहुत फायदे हैं। त्रिवेणी जैसे आप जानते हैं दो तरह की होती हैं, एक बड़ी त्रिवेणी होती है जिसमें बड़, पीपल और नीम आता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको ओपन स्पेस ज्यादा चाहिए, कई बार एक पीपल का या बड़ का पेड़ लगभग 500 से 1000 स्क्वायर मीटर में फैल जाता है। छोटी त्रिवेणी, हरड़, भेड़ा, आंवला, इन्हें तो अमृत कहा जाता है। आप जब पार्क की बात करें तो आप ये लगा सकते हैं।
3: एक कॉल आ रहा है हमारे पास, कॉल लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
5: राम राम जी,
3: कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
5: मैं से बोल रहा हूँ सर, एक कविता सुनाना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए, सुनाइए।
1: इरशाद, स्वागत है आपका।
5: हाँ जी सुनो जी, मेरी एक कविता है, मेरी खुद की कविता है। और जो
1: नाम एक बार बताओ, नाम।
5: मेरा नाम सुरेंद्र है जी, गाँव समस्तपुर है जी।
2: जी जी
1: हाँ, नाम से शुरू करना चाहिए ना जी, समस्तपुर वालों बताओ।
5: एक दिवस मैंने देखा मेरी सभी किताबें बोल रही,
3: जी,
5: पर छपी हुई तस्वीरें मेरा बस्ता खोल रही। इतने में मैंने जो देखा, तस्वीरों ने बस्ता खोला और खुलते खुलते बन गया वह उड़ने वाला उड़न खटोला। खिड़की में से सभी पहाड़े और सवाल निकल आए, मुझे देखकर लगे चिढ़ाने, गुड मॉर्निंग और नॉटी बॉय। मैंने समझा सभी किताबें उड़ उड़ कर है चली गई, स्कूल पड़ेगा मुझे न जाना, पढ़ना होगा मुझे नहीं।
3: क्या बात,
5: इसी खुशी में नाचा जब मैं और हिलाया सिर अपना, नींद खुली तो मैंने देखा वह तो था झूठा सपना। ये मेरा सपने की कहानी
2: जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
3: आपने
1: बढ़िया लिखते हो भाई साहब।
3: आप एक काम करिए,
1: लिखता रहिए
3: सर। कॉलर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चरखी दादरी के अपने सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो पे जाइए। इस समय हमारे साथ प्रीतम जी है और आप वहां जाइए, रिकॉर्ड करवाइए ये कविता और ताकि बार बार ये लोगों तक पहुंचाए। प्रीतम जी क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें?
0: भारत जी हाँ, ये सुरेंद्र जी हैं संस्कृत से, काफी बार हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं
3: जी।
0: हमारे लगातार सुनने वाले श्रोता हैं ये, रेडियो से कनेक्ट है तो कभी भी आके इनकी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं
2: जी। जी सुरेंद्र जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, झूठे सपने की जगह आप कहिए। वो तो था एक मनमोहक सपना, क्योंकि झूठा सपना मतलब आप अपने अपने या एक सपना या मनमोहक सपना उससे उसकी उत्कृष्टता में बल मिले।
5: मेरा सपना है जी, वो
2: बहुत अच्छा।
5: आज मित्र के सपना है ये, मेरा सपना।
2: बहुत अच्छे।
3: अच्छा सुरेंद्र जी, एक बात कहना चाहूंगा कि आज पर्यावरण दिवस है, आप जब घर जाएंगे तो आज कम से कम एक पौधा जरूर लगाए।
5: धन्यवाद जी, बिल्कुल लगाऊंगा जी। मैंने वैसे उसके इसके क्या नाम है, जामुन के पौधे लगा रखे थे।
2: बहुत अच्छे,
5: और बड़े बड़े हो चुके हो।
2: बहुत अच्छे, तो उनकी जामुन कब खिलाइएगा?
5: उनकी जी अभी तो जामुन लगने नहीं लगे हैं, वो थोड़े से छोटे ही हैं, लेकिन उनकी मैं डेली सेवा पानी करता हूँ। मेरी घरवाली भी उनकी डेली सेवा पानी करती।
3: बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। वीरेंद्र सर कुछ कहना चाहेंगे इन्हें?
1: बस इनको मैं ये कहूंगा कि मुझे
3: सुरेंद्र जी सुनिए, वीरेंद्र जी कुछ कह रहे
1: हैं, मुझे अगर जामुन खाने के लिए भेज देंगे आप अपने पेड़ों की, तो मैं आपका आभारी होऊंगा। जब भी आपके पेड़ पे जामुन लगने लगे तो पहली फसल में मेरा हिस्सा जरूर पहुंचा दीजिएगा। पक्का तरीका आप जान और प्रीतम जी जाने।
2: बिल्कुल
3: जी सुरेंद्र जी, आपका
5: रेडियो दिवस पर भी आता हूँ मैं, मेरे यहाँ पर भाषण रिकॉर्ड भी है जी।
3: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़े और आपने अपनी कविता सुनाई और जो हमारी चर्चा थी उस चर्चा में आपने चार चांद लगाए, क्योंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे थे और आपने जो कविता सुनाई तो एक जो लेखक है वो जब हमारे सामने आता है, लेखक जो है वो हमारे समाज का एक ऐसा प्रारूप होता है जो सही दिशा में लिखता भी है और सही दिशा में लोगों तक पहुंचाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
5: ठीक है जी, अगली बार अगली कविता लिख करके तैयार रखूंगा जी।
3: जरूर शुक्रिया। गुरविंदर जी आप कुछ कहना, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? गुरविंदर जी
6: धन्यवाद भक्ति। पहले तो मैं आज सभी हमारे सुनने वाले और पैनल में जुड़े सभी मेहमानों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ। जैसे कि हमारे
3: गुरविंदर जी, एक कॉल और आया। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे
7: हैं?
3: क्या नाम आपने बताया?
7: हरियाणा राज्य जिला चरखी दादरी।
3: हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप?
7: हम कहना चाहते हैं कि हमारे गांव की जो फिरनी है ना, उसमें बारिश होगी तो पानी नहीं निकलेगा, हमारे खेत में आने जाने का रास्ता खत्म हो गया
3: जी। प्रीतम जी क्या कह रहे हैं?
0: कहाँ से बोल रहे थे आप
3: जी?
7: क्या जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं जी?
7: हरियाणा राज्य जिला दादरी खंड पड़ेगा।
0: गांव तो होगा सर, को आपका गांव कौन सा है? हाँ तो ये समस्या आ चुकी है, इसका सोमवार को हम BDPO सर ने जोड़ेंगे, पंचायत ऑफिसर ने, तब पता चलेगा आपकी समस्या क्या है।
3: और आप कॉल भी कर दीजिएगा, उस समय डायरेक्टली उनसे बात करेंगे आप। जी धन्यवाद।
0: सोमवार को आपका पंचायत ऑफिसर जुड़ेगा बालडा का, वो बताएगा कि आपके गांव की क्या कारण है, जो फिरनी दबी हुई है या जो रोड नहीं बना उसका क्या कारण है।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और वीरेंद्र सर
1: सोमवार को सुनते भी रहे कार्यक्रम, और कार्यक्रम में जब प्रीतम जी समाधान लेकर आए तो उस समाधान का आप हिसाब भी बने माने उसको सुने भी, और मौके पर भी अगर अधिकारी से कोई सवाल पूछने का आपका मन हो तो जरूर पूछें। हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में
8: जो चीजें आती हैं भारत जी, कुछ सवाल आते हैं, कुछ सुझाव आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि संबंधित अधिकारियों को हम कभी उसी दिन और कभी कभी आगे पीछे जोड़ लें, ताकि जो टूटे हुए तार हैं उनको जोड़ा जा सके, जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट किया जाए। हमारा इस कार्यक्रम का मकसद संवाद से समाधान है। बातचीत करेंगे, बातचीत में से उछलने वाले सवालों को निहारेंगे, सवालों से भी बात करेंगे और फिर सवालों से कहेंगे कि सवाल जी हम समाधान की दुकान चलाते हैं, हमारे पास आपका समाधान है, और फिर वो समाधान हम अपने श्रोताओं को प्रस्तुत करते हैं रेडियो विदस्ता के माध्यम से, रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से, अपना रेडियो के माध्यम से, हरियाणा के अनेक विभिन्न विभिन्न जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसमें FM भारती भी शामिल है, रेडियो अरावली शामिल है, साझा रेडियो भी बहुत बार हमारे साथ होता है, इन सब रेडियो स्टेशन के साथ NGF हमारे साथ होता है, इनके माध्यम से फिर हम वो समाधान जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते ही हैं। यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है और राज भी है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि इस पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले जो हमारे किसी भी आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे बूढ़े जवान, दादी चाची ताई बुआ बहना पत्नी, जो भी लोग हैं, अगर उनको एक एक संकल्प कोई करवाना हो तो वो आप सोच के रखिए, श्रोता को सुनने के बाद आपको सुनेंगे हम
2: जी।
8: हेलो, हेलो,
9: हेलो, नमस्कार सर जी।
3: नमस्कार,
8: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
9: सर विजय सिंह।
8: आपने रेडियो चला रखा है, इसको बंद करिए।
9: नमस्कार,
8: नमस्ते,
9: विजय सिंह लखेरा बोल रहा हूँ, वीर भूमि खेड़ी तलवरा महेंद्रगढ़ से जी।
3: जी जी, विजय सिंह लखेरा,
8: गांव का नाम दोबारा बताइए।
9: सर पर्यावरण देश के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयां। और सर जी, पर्यावरण दिवस के पेड़ों के, सर पर्यावरण तो पेड़ तो हमारा तकरीबन हर मंथली सीजन आता है बारिश का, इसमें लगाते हैं। जैसे मैंने भी 4-5 पेड़ लगा रखे, एक तो पापड़ी का पेड़ लगा रखे जी, बहुत बड़ा हो गया जी, वो उसकी ऊंचाई होगी कम से कम 20 फीट के आसपास जी। और सर डॉक्टर साहब बैठे, इनसे भी एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मैंने एक आम अनार का पेड़ लगा रखा और एक जामुन का, तो जामुन का जी 10 साल के करीब हो गए, उसमें 3-4 गुच्छे अब दिखाई दिए हैं थोड़े थोड़े
2: जी।
9: और अनार के पेड़ में छोटे छोटे फूल आते हैं और वो छटक जाते हैं जी, उसमें फल बन नहीं बन रहा आजकल
2: जी। देखिए, अनार के पेड़ पे फल तब आएंगे जब मिट्टी में बहुत ज्यादा जान होगी। आप 5 किलो गोबर ले लीजिए और उसमें 1/2 किलो गुड़ डाल दीजिए और 1/2 किलो के या 1/2 लीटर लस्सी डाल दीजिए।
9: और लस्सी
2: जी, गोबर गुड़ और लस्सी, इसे 10 दिन तक आप ढक के रखिए,
9: मतलब किसी अलग बर्तन में मिश्रण करके उसको रख दें साइड
2: जी,
9: में
2: जी जी। और उसके बाद अपने जो पेड़ के आसपास 1/2 फीट जमीन खोद ले
9: जी,
2: और उसमें ये डाल दें और ऊपर से हल्की हल्की पोली पोली मिट्टी कर दें। अगर आप दो बार, अगले 2 महीने में 2 बार कर दें तो अगली बार आपके पेड़ में फल बहुत आएंगे, क्योंकि अब जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया एंड जो DPT जैसे जो चीजें हमारे पास इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से जमीन की गुणवत्ता खराब हो गई है, कम हो गई,
3: कमजोर हो गई है।
2: अगर आपने देखा होगा, पहले अनार बड़े होते थे और बिल्कुल अंदर से लाल होते थे, अब वो सफेद रह गए, इसका मतलब है कि जो आयरन कंटेंट जमीन का है वो कम हो गया है। उसी तरह से जामुन है, जामुन में आप यकीन कीजिए, जामुन का जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट है वो बहुत हाई है, इसलिए उसे जमीन से बहुत सारे न्यूट्रिशन लेने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास कोई लोहे के ऐसे जो चीजें हैं जो वेस्ट हैं, उसे भी आप इस गोबर वाली खाद में डाल सकते हैं, वो 10-15 दिन में डायल्यूट हो जाएंगे, उसके बाद 1-1 फीट के करीब गहरा करके चारों तरफ उसका ये डाल दीजिए और अगले साल पक्का आपके पेड़ में फल आएंगे। 1-1 महीने में अगर आप कर देते हैं 3 बार तो यकीनन, और अगर आप ज्यादा डालते हैं तो उससे जड़ें खराब हो सकती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 दिन के अंदर ये सूख जाए। ऐसा नहीं कि आप उसे डेली भरते रहें, क्योंकि ज्यादा नहीं, आपको उसके जमीन का देखना पड़ेगा कितनी जमीन में वो उसकी जड़ें हैं, तो 1 फीट गहरा कीजिए चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद डाल के ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी डाल दीजिए पोली पोली सी, और 2-1 दिन उसमें

0: जी
1: शुक्रिया सर। जी
0: जी गुरविंदर जी, आपका सवाल रह गया था, कृपया आप अपना सवाल पूछें।
2: जैसे हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं,
0: जी
2: हम पिछले समय में जाएं, जो हमारे सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी,
0: जी जी
2: उन्होंने जो जपजी साहब की वाणी है जिसे हम डेली पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पवन गुरु पाणी पिता
0: पिता
2: माता
0: माता
2: धरत
0: रहत महत।
2: मर्त्य दिवस रात दुधारे अकेले सगल
0: हाँ
2: जग।
0: जी
2: मतलब काफी पहले उस चीज को, जैसे पानी को पिता का दर्जा और हवा
0: धरती
2: को
0: को
2: गुरु का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया
0: जी
2: है,
0: जी
2: हम
0: जी
2: इन तीनों की संभाल में जितना जतन करेंगे उतना हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अच्छा होगा। और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर जगेंद्र सिंह जी का धन्यवाद
0: प्लीज
2: करता
0: प्लीज
2: हूँ, उनको
0: प्लीज
2: प्रणाम करता हूँ। तो
0: जी जी
2: मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो इनके नाम के साथ ग्रीन मैन का तखल्लुस जुड़ा है,
0: जी
2: इसके बारे में कृपया हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को भी बताएं।
0: जी देखिए, पिछले 12 साल से मैं अंबाला में और 5 लाख से ज़्यादा पेड़ में लगा चुका हूँ। यहाँ 4 KVs हैं, चारों की एडवाइजिंग बॉडी में मैं हूँ और लगभग हर स्कूल में मेरे अपने टर्म्स अच्छे हैं। हर स्कूल में हमने पेड़ लगवाए हैं DFO के माध्यम से, अदर सर एक मिनट, कॉल आ जी रहा है। हाँ जी, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए।
3: नमस्कार सर, मैं ममता बोल रही हूँ।
0: हाँ
3: जी
0: जी, ममता जी,
3: नमस्कार।
0: चरखी दादरी से बताइए, आज क्या खबर लेके आए हैं? मौसम अच्छा है चरखी दादरी में?
3: समस्या है जी, ठंडा ठंडा है, इतनी गर्मी भी नहीं है।
0: अच्छा, आज आप क्या बताने आए हैं हम सबको और हमारे श्रोताओं को? हाँ
3: आज डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ।
0: जी
3: मैंने
0: पूछिए।
3: जामुन के पेड़ लगा रखे हैं, जामुन
0: हाँ जी पूछिए, वो आपको सुन रहे
3: के
0: हैं।
3: पेड़ लगा रखे हैं,
0: जी जी
3: बाबू बोसे के पेड़ हैं, और मौसमी संतरे के हैं, और उसके नींबू के हैं, और
0: जी जी
3: तुलसा भी है।
0: जी
3: तो मैं उसमें चाय पत्ती अदरक का वो देती हूँ खाते, उससे फूटा उसमें ज्यादा होता है, वो नुकसान तो नहीं करेगी सर?
0: देखिए, चाय पत्ती बेसिकली क्या है, एक पत्ती ही है, जब वो उबल जाती है और उसके बाद जो उसका वेस्ट है वो डिकम्पोज होके वो खाद ही बन जाता है। लेकिन आप जड़ में, तुलसी की जड़ में अगर डालेंगे तो तुलसी की जड़ में जब भी कोई झूठन डालते हैं, ये पता नहीं कहाँ साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक लॉजिक है, मैजिक है, लेकिन वो खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि तुलसी
3: सर,
0: की
3: मैं जड़ में नहीं डालती,
0: जी
3: जड़ में नहीं डालती, जड़ ऊपर डाल देती हूँ मिट्टी के, और
0: जी
3: फिर
0: जी
3: उसमें खोदी सी कर देती हूँ,
0: बस
3: और उससे ना फूटा ज्यादा हो रहा है
0: जी
3: उनमें।
0: जी जी जो चाय पत्ती का ये देखा गया है, चाय पत्ती, हम जो वेस्ट चाय पत्ती है, अदरक है, इनको जब हम पेड़ पौधों में की जड़ में मिलाते हैं तो वो अच्छा उनका ग्रोथ होता है, क्योंकि वो एक नेचुरल मैन्योर की तरह काम करते हैं और ये हमेशा होता रहेगा और आप अच्छा काम करें, लगे रहें।
3: जी
0: ममता जी,
3: थैंक यू।
0: अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो चाय पत्ती अगर हम तुलसी के जड़ में डालें तो शाही तुलसी जो है उसमें उसका नुकसान होता है, क्योंकि ये माना गया है कि तुलसी पर अगर कोई हम जूठी चीज डालें शायद उसका दुष्प्रभाव होता है। तो आप हर जगह डाल दीजिएगा, केवल और केवल तुलसी में कोई झूठी चीज ना डालें, ताकि वो बनी रहे और वो भी अपना काम करें। और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुटते हैं, ये अच्छी बात है।
3: मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ सर, मैं झूठी चीज नहीं डालती, चाय बनती है ना वो टोपिए की चाय पत्ती डालती हूँ, वो
0: जी
3: झूठी ही होती सर,
0: ठीक
3: छान
0: है
3: के उसमें टोपिए की डालती
0: ठीक
3: हूँ,
0: है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत
3: तो
0: अच्छे।
3: उसमें ना उसमें फूटे बहुत हो रहा है सर, और घनी जामी आई।
0: नहीं वो उसके मैन्योर कंपोजिशन है, मैं जी
2: जी
0: जी
2: ममता जी, आपका हमारे साथ जुड़ना भी तुलसी लगाने जैसा ही है, हर दिन आप कार्यक्रम में जुड़ करें हमारे साथ तो
0: जी
2: हर दिन आप कार्यक्रम में जुड़ा करें, हमारी यही इच्छा है। मेरी
0: जी
2: आवाज मिलती है भरत जी?
3: रोज सुनती हूँ सर।
2: और मैं राम राम हरियाणा के आज के अंक से भारत जी
0: जी
2: आप लोगों से अनुमति लूंगा, क्योंकि मैं जिस एक कार्यक्रम में पहुंच गया हूं
0: जी
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, या यमुनानगर जिले के राधौर विधानसभा क्षेत्र का गांव है पिंडी,
0: जी
2: वहां पर एक ग्राम सभा में लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे इतनी देर से।
0: जी
2: आज यहाँ पर्यावरण की ही बात होगी, मैं कार्यक्रम स्थल पर क्योंकि पहुंच गया हूँ, तो आप सब लोगों से अनुमति लेकर मैं
0: जी
1: उस कार्यक्रम में शामिल होता हूँ और

0: कोशिश करेंगे कि उस राज्यसभा के कुछ हिस्से हम फेसबुक पर लाइव करें।
1: जी
0: भारत जी और डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, आज नहीं मिलूंगा मैं, राम राम हरियाणा के अगले अंक में आपसे उससे मुलाकात होगी। मेरी ओर से राम राम।
1: राम राम। राम राम जी। गुरविंदर जी आपका सवाल का जवाब हो गया कि अभी नहीं?
2: नहीं नहीं अभी नहीं हुआ
1: जी। आप
3: डॉक्टर साहब घुमा रहे थे।
1: जी जी जी, जी, जी। आप बताइए, आप ये जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर डॉक्टर साहब दे रहे हैं।
2: देखिए किसी भी सभ्यता के प्रिमिटिव स्टेज में पानी को, धरती को और साथ साथ सूरज को या कि पंच तत्वों को ही देव या गुरु माना गया है। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, अलग अलग तरह के फिलोसफी आई और अलग अलग थॉट डेवलप हुई। मेरा ये मानना है कि पेड़ पौधे वाकई में ही, जैसे आपने जपजी साहब का जिक्र किया, उसमें गुरु नानक देव जी की पहली वाणियों में से है, तो पेड़ पौधों का जो अपना महत्व है और पेड़ पौधों के सिवा कोई भी चीज़ इतनी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। जैसे मैं आपको से शेयर कर चुका, पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, वो जीवन तत्व हैं। पानी का होना, बाढ़ का होना, पानी का कम होना, पानी का ज्यादा हो जाना, सूखे का होना, बाढ़ का हो जाना, ये भी पेड़ों के होने पे ही निर्भर है। किसी नदी का कटाव इतना हो जाए कि वो बाढ़ ला दे या वो पानी ही ना बचे कि सूखा हो जाए, ये भी पेड़ों के होने पे ही संभव है। अगर पेड़ बिल्कुल नहीं है तो आप ड्रॉट का सामना कर सकते हैं, पानी सूख सकता है, और पेड़ अगर अच्छे हों तो आपको एक हरा, एक समृद्ध समाज मिल सकता है। जहां तक आपके प्रश्न की है कि कैसे करेंगे हम, आपको मुझे ग्रीन मैन का जो अवार्ड है वो लगभग 12 साल से अलग अलग स्कूलों में करते हुए, मैं रोटेरियन भी हूँ, इस टाइम मैं रोटरी में प्रधान भी हूँ अम्बाला कैंट में। तो 3080 जो हमारे रोटरी है उसमें भी मुझे ग्रीन मैन का अवार्ड दिया गया है 3 साल पहले, और मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी रहा हूँ हमने पेड़ लगाने की कोशिश की है। ये एक पर्यायवाची जैसा बन गया है, वो डॉक्टर जो पेड़ लगाने में शौक
1: रखता है।
2: और इससे मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि डॉक्टर मर गया जब भी कोई आता है तो यही नहीं शब्दों के साथ, तो थोड़ा सा आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो जीवन आपको ज्यादा मिलता है। और साथ साथ में एक चीज़ जो मैं, जैसे चर्चा हो रही थी, डॉक्टरी का मकसद सिर्फ दवाई देना नहीं है, दवाई तब देते हैं जब बीमार हो जाता है, लेकिन बीमार ना हो ये भी एक प्रिमिटिव साइंस, एक प्रिमिटिव
1: प्रिकॉशन, एक प्रिकॉशन
2: जिसे कहते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन अपने आप में एक पूरी की पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको जानकारी मैं एक शेयर करना चाहूं कि जब आप अच्छे से सांस लेते हैं, पेड़ पौधों के पास रहते हैं, तो आपके अंदर डिप्रेशन कम आता है। आज से 30-40 साल पहले जब पूर्ण रूप से टीबी का और एंग्जाइटी का इलाज नहीं था तो उन्हें हिल स्टेशन पे भेज दिया जाता था। जैसे आपको ध्यान हो, शायद मैं इसको पूरी तरह से तथ्य को मानता हूं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जी नेहरू जी की वाइफ को टीबी थी, तो उन्हें स्विट्जरलैंड में भेज दिया गया था क्योंकि उस टाइम में उनका इलाज नहीं था, तो स्विट्जरलैंड में भेज दिया एक अच्छी वादी में, तो वो वहां अच्छी जीवन जिए। हरियाणा में भी, हरियाणा जब पंजाब हुआ करता था, जब किसी को कोई टीबी की या बहुत लंबी बीमारी होती थी तो उसे शिमला की तरफ भेज दिया जाता था। तो ये पेड़ों का अपना महत्व है और हम सबको मिलकर पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पेड़ चाहे एक लगाए, दो लगाए, लेकिन 3-4 चीजें उस पेड़ में होनी चाहिए। छांव होनी चाहिए पेड़ में, फल होना चाहिए, आपकी जो स्ट्रक्चर उसे डिस्टर्ब ना करे और साथ साथ में सस्टेनेबल हो, लंबे टाइम तक चल सके। तो ये सब कुछ चीजें अगर होंगी तो मुझे लगता है वो पेड़ हमारे काम के हैं। अगर आप ऐसा कोई पेड़ लगा दें जिसकी छांव भी नहीं है, जिसका फल भी नहीं है और जो आपके पर्यावरण को बहुत ज्यादा, जैसे आज का एक नियम चला हुआ है, हर आदमी पेड़ लगा रहा है, प्लास्टिक के पेड़ भी आ रहे हैं, हम अपने बेडरूम्स में वो लगा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, और बड़े महंगे लगा रहे हैं, हम अपने आस पड़ास में घर के सामने नॉन यूजफुल
1: जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? स्वागत है आपका।
4: राम राम जी।
1: राम राम जी,
4: प्रदीप डागर बोल रहा हूँ जी।
1: अच्छा डागर साहब, कहां से बोल रहे हैं?
4: छोला गांव चरखी दादरी से जी।
1: जी जी, चरखी दादरी से। बताइए क्या कहना चाहते हैं?
4: सर पर्यावरण दिवस पे मैं भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कभी आज से 20 साल पहले पेड़ लगाया था।
1: जी जी,
4: वो भी गांव के बिल्कुल आज पंचायत घर के बीच में आ चुका है
2: जी। बहुत अच्छे,
4: वहाँ खाली जगह हुआ करती थी, वहाँ पे होली मनाई जाती थी अपने गाँव की।
2: जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
4: तो वहाँ पे हमारे जो दादाजी थे उन्होंने शिक्षा दी थी, कुछ जैसे नल होते थे तो सार्वजनिक नल होते थे सबके लिए, एक नल होता था गांव में वही पानी भरा जाता था।
2: जी जी,
4: जब वो उस टाइम पे खाली चलता था तो वो बोलते थे बेटा इस पानी को नाली बना के इस पेड़ तक छोड़ दो, ऐसे बोलते थे वो। उन्होंने शिक्षा दी थी कि बेटा हर साल एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए इंसान, क्योंकि जब पैदा होता है इंसान तो भी इसकी जरूरत पड़ती है और जब खत्म होता है तब भी इसकी जरूरत पड़ती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सो ट्रू सो ट्रू।
4: तो जो उस टाइम पे वहां होली गांव की सामूहिक होली मनाई जाती थी
2: जी।
1: अब और क्या स्थिति है
4: कर लिया वहां पे? हाँ जी,
2: अब क्या स्थिति है?
4: मैंने जिद कर लिया तो त्रिवेणी लगाऊंगा और मैंने वहां त्रिवेणी लगा दी थी।
2: बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे।
4: और उसको अंदर से दादाजी ने मेरे को उकसा दिया कि इसको पानी डालते रहना, होली गांव यही मनाएगा, तू ये सोचेगा कि ये नहीं चलेगी, ये तो करेंगे तेरे साथ, लेकिन तने इस पेड़ को बचाना है।
2: जी जी,
4: अभी 8 साल तक कंटिन्यू उस पेड़ के साथ जुड़ा रहा। गांव वाले वही बच्चे जिद्दी करके वहां होली मना देते, उसको जड़ लगती वो जड़ जाता फिर फूट जाता वो। बर्ड पीपल और नीम तीनों चीज थी
2: जी।
4: पीपल तो खत्म, बर्ड तो खत्म हो गया था जी उसका, नीम तो खत्म हो गया था, एक बार दो बार वो खा गया तो अपने आप सूख गया वो
2: जी,
4: लेकिन बर्ड और पीपल दोनों कवर हो गए।
2: एक
4: एक जी जान बन गए वो बर्ड।
5: सराहनीय कार्य कर रहे हो प्रदीप जी,
4: आज कम से कम जो 25 फुट के आसपास एरिया घेर चुका है।
2: बहुत अच्छे, बहुत खूब।
1: डागर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, डागर साहब जो आपने काम किया है बहुत साल पहले, आप उस काम को जारी रखें और ऐसे ही जो युवा है गांव के उन्हें प्रेरित करें, और जो आपने तब सोचा था जिसका आप रिजल्ट आज देख रहे हैं, ऐसे ही इसी प्रेरणा के साथ आप औरों को भी प्रेरणा दें और ये काम आप ऐसे ही जारी रखें जैसे हमारे डॉक्टर साहब है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने अभी 5 लाख से ज्यादा के पेड़ लगवाए हैं या लगाए हैं, तो ये एक बहुत ही धर्म का कार्य है जिससे हमारी जिंदगी आगे चलती है, जिससे हमें सांसें मिलती है और जिससे हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की या आने वाले पीढ़ी की जो सांसें हैं वो बरकरार रहेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। और कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले?
4: यस यस सर
1: जी, बताइए जल्दी बताइए।
4: मैं चाहूंगी पेड़ चाहे भले ही आप कम लगाओ
1: जी,
4: लेकिन उस पेड़ को पूरा करने में अपनी ताकत लगाओ
2: जी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
4: तो लगा कोई भी देगा, आप 10 पेड़ भी लगा दोगे, लेकिन उसको पूर्ण बनाना अपना जीवन का ध्येय होना चाहिए कि मैं इस पेड़ को पूरी दीक्षा करूंगा तब तक मैं रहूंगा, तभी पेड़ बनेगा।
2: सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पिछले 10 सालों में जितने पेड़ इंडिया में लगे हैं, अगर उनमें से 10% भी जिंदा रहते तो आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि लगाए ज्यादा जाते हैं, सर्वाइवल रेट बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 1-2% हार्डली, क्योंकि कुछ पेड़ तो सिर्फ और सिर्फ लगाए ही जाते हैं और कुछ कागजों में ही लगाए जाते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन फिर भी सच्चाई यही है। तो आपका बिल्कुल सही है कि आप हर साल सिर्फ एक भी पेड़ लगाएं, अगर उसको भी जिंदा रख पाते हैं तो आप अपने एक्टिव लाइफ में कम से कम 30-35 पेड़ लगा चुके होंगे। ये बहुत ही गुणवत्ता से युक्त आपकी बात है, हम कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो करें और आपके माध्यम से ये हमें संदेश मिला, हम दिल से आपके आभारी हैं।
1: डागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है, आपने कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आपका आभार।
6: डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूं कि आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है
2: जी,
6: आपका संपर्क नंबर है, वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर दीजिए
2: जी।
6: कई बार वो आपसे कोई मिलना चाहता हो, कोई प्रेरणा देकर आपको बोलो जरूरत पड़े
2: जी। देखिए इसके लिए आप, अगर फोन नंबर की बात है तो मेरा फोन नंबर है 999-6-3 4003 9993 4003। इसके साथ साथ हम फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह के नाम से। इसके साथ साथ मदर अर्थ के नाम से हमने एक पेज बनाया है जिसमें पेड़ कैसे लगे, क्या हम कहाँ कहाँ एक्टिविटी करते हैं वो हम शेयर करते हैं। तो आप अगर मदर अर्थ नाम से ढूंढेंगे तो वो भी एक एक्टिविटी हम करते हैं। साथ साथ में सहयोग के प्रयास के नाम से, जैसे जिसकी जितने हालात में हम मदद कर सकें, और बल्कि मैं ये कहूँगा जिस जिसकी मदद करने के लिए परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई, वो भी एक एक्टिविटी हम करते हैं। हर साल 16 दिसंबर से लेके फरवरी तक कपड़ों का, यूज कपड़ों का एक स्टॉल हम अंबाला कैंट में लगाते हैं और ये 10 साल से ऐसा चल रहा है। साथ साथ में कैंसर अवेयरनेस के लिए भी हम बहुत तत्पर हैं, पिछले 20 सालों से हम ये काम कर रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, समय इस कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है। प्रीतम जी से भी मैं कहूंगा कि आखिरी टिप्पणी करें, और मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको आप दवाई देते हैं, क्या पर्यावरण के बारे में भी दवाई के बाद उनको या उससे पहले कुछ कहते हैं?
2: देखिए, अगर कोई बच्चा है और बार बार बीमार हो रहा है और उसकी हाइट नहीं आ रही है या वो हेल्दी नहीं हो रहा था, तो मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि आधा आंवले का मुरब्बा, एक हरड़ का मुरब्बा और थोड़ा बांस का मुरब्बा आप सुबह खाना खाने से पहले या उठते ही आप ले लीजिए। आंवले का मुरब्बा आपके विटामिन मिनरल्स को कुछ को पूरा करता है, हरड़ आपके पेट को साफ करती है, और जो बांस का मुरब्बा है आपके लेंथ को, आपके कैल्शियम कंपोनेंट को पूरा करता है। मेरा हमेशा ये मानना है कि दवाई 10% 15% हो सकती है, बाकी आपकी डाइट होती है, आपके प्रिवेंटिव पैटर्न्स होते हैं, आपकी हाइजीन होती है, और इन सबसे ऊपर आपकी होलिस्टिक अप्रोच होती है टुवर्ड्स द डिजीज। कोई बीमारी बीमारी नहीं होती, न्यूट्रिशन की कमी या सफाई की कमी ही होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे?
7: मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को इतनी बेहतर जानकारी दी जी। और मैं श्रोताओं से भी आशा करता हूँ कि हर श्रोता डॉक्टर साहब से प्रेरित होके अपने जीवन में, मैं तो कहता हूँ कि हर साल अगर एक पेड़ अवश्य लगाएंगे जी। और इससे हमारा पर्यावरण सही होगा,
1: और उसकी
7: और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता
1: हूँ। और जैसे प्रीतम जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे पूर्ण करता हूँ, और पेड़ लगाएं और फिर उसकी देखरेख भी करें। जैसे अभी हमारे पास डागर जी जुड़े थे, तो मैं ये कहूंगा कि पेड़ लगाना भी एक परिवार का एक हिस्सा है। जैसे हम अपने परिवार सदस्यों का जन्म के बाद ध्यान रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं और वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, ऐसे ही एक पेड़ जब हम लगाएं और उसकी भी देखरेख हम ऐसे ही करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरबिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो सफर के दौरान भी हमारे साथ जुड़े। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम का मैं कर रहा हूं समापन, और मिलते हैं अब सोमवार को 4 बजे शाम को कार्यक्रम राम राम हरियाणा में।
2: राम राम हरियाणा,
1: सभी के लिए राम राम।
2: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत खूबसूरत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सब

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं किरणी, आपके साथ सुपर हिट पुरानी गानों की प्लेलिस्ट के साथ प्रोग्राम रेट्रो हिट्स में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चांद, और आज आपको मैं सुनाती हूं चांद पर आधारित गाने जो आज भी उतने ही खूबसूरत और हर दिल अजीज हैं। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद आया है।

पूरे के ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। ये चांद सा रोशन।

0: चांदनी रात में चांद तेरे चेहरे से जलवा दिखाता है, सितारों के जहां सारा उसकी रोशनी में चमकता है।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: दिन में चैन नहीं ना होश है, रात में खो गया है चांद भी, देखो बादल के आगोश में।

कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पे शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पे, तभी चांद पे तारों का पहरा है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशन रहा भारत सोपोरी का। ये थी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता की पेशकश।
1: 90.0 एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। कुछ ही क्षणों में अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आज हम कार्यक्रम का समापन करेंगे रात को 9 बजे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे और आशा यही करते हैं कि आपके जो कार्यक्रम हमारे हैं और आपको पसंद आ रहे होंगे। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। जी हाँ, सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं। ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने गमों का।

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप्त अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। कोशिश करते हैं हम वो बात करें जो आपसे रखती हो सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। नमस्कार श्रोताओं, अब समय हो चला है आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के आज के खूबसूरत सफर को यहीं पर विराम देने का। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भरत सोपोरी। आज के विशेष कार्यक्रम की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। श्रोताओं, आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास रहा। आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस पावन अवसर पर रेडियो विदस्ता ने भी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक बेहद खास मेहमान को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया था। आज हमारे साथ स्टूडियो में रूबरू हुए अंबाला के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी। पूरे हरियाणा प्रदेश के श्रोताओं ने उन्हें सुना और उनसे सीधे बातचीत की। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रेरक सुझाव और जमीनी स्तर के उपाय हमारे साथ साझा किए, उन्हें आप सभी श्रोताओं ने बेहद पसंद किया। आज रेडियो विदस्ता के मंच से डॉक्टर जोगिंदर सिंह की प्रेरणा से पूरे हरियाणा के हजारों श्रोताओं ने यह पावन संकल्प लिया कि इस पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएंगे नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे। आप सभी का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। हम डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस पावन दिवस पर यहां पर आए और उन्होंने हमारे श्रोताओं के साथ बातचीत की। जाते जाते आपको हर दिन की तरह कुछ पंक्तियां और कल के कार्यक्रमों का विवरण। आज की पंक्तियां आप सभी के नाम यूं हैं: हवाओं में गुले खुशबू, जमीन पर हरियाली का रास्ता हो। हवाओं में गुले खुशबू, जमीन पर हरियाली का रास्ता हो। प्रकृति के हर एक रंग में शामिल अपना वास्ता हो। सहज कर रखेंगे इस पर्यावरण को हम सोपोरी, सहज कर रखेंगे इस पर्यावरण को हम सोपोरी। गूंजती रहे सदा सुरमई लहर, जहां बहती रहे रेडियो वितस्ता हो, जहां बहते रहे रेडियो वितस्ता हो। तो ये थी पंक्तियां आज की आप सभी के लिए। और जाते जाते आपके कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 6 जून 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर वंदे मातरम से शुरुआत होगी हमारी सभा और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर सुनहरे पल एपिसोड 9 आनंद बख्शी पर तैयार किया गया कार्यक्रम पेश करेंगे आरजी किरनी, और 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 21 साइबर क्राइम टू सीनियर सिटीजन्स। 9:30 पहलू और गीत कार्यक्रम एपिसोड 14, 10:10 पर काव्य गोष्ठी होगा एपिसोड 8। हमारे साथ होंगी यमुनानगर से इंदु शर्मा जी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल, और 7 बजे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 10, शीर्षक होगा शाम, और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है मौसम। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे, और आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। श्रोताओं, आज का सफर यहीं तक था। पेड़ों को पानी दीजिए, हवाओं को शुद्ध रखिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए। कल सुबह फिर ठीक इसी स्टेशन FM 90.0 MHz पर नई ऊर्जा, नए गानों और नए विचारों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक।
और मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।